0: सोना खरीदे आर के ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
6: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये एक ऐसा सीक्रेट कन्फेशन है जो इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता. आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट. इट इज नॉट नॉटी और एनीथिंग, बट आई थिंक आई नीड रोशिफिकेशन. अगर आप मुझे ऐसा मैसेज लिखकर भेजोगे, आई हैव नो ऑप्शन बट टू रीच आउट टू यू विद ऑल ऑफ माई लव. मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर, बट अगर आपके पास भी कोई सिचुएशन इन लाइफ है विच डिमांड्स रोशिफिकेशन, आप हक से मुझे अपना नंबर भेज सकते हो इंस्टा या FB पर, और मैं उतने ही प्यार से आपको वापस फोन करूंगी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ दबी हुई आवाज में, बिकॉज इट सीम्स लाइक जेन्युइनली शी हैज नॉट टोल्ड एनीवन द सीक्रेट, इज माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी, क्या कह रहे थे आप?
2: क्या मैं कह रही थी, मैं कहा 2-3 महीनों के लिए कमिटेड थी, ठीक है. सब बहुत अच्छा चल रहा था, फेरी टेल की तरह से. उसके बाद क्या होता है, मुझे वो कॉल करता, मैंने 7 o'clock कॉल करती थी. हम लाइक 25 मिनट बात करते, हम कर जाते क्योंकि हम अभी दोनों स्टडी कर, ठीक है. तो लाइक स्टडी भी मैनेज होती, वो बिल्कुल सही चल रहा था. लेकिन वो थोड़ी देर पहले, ऐसे मैंने 7 बजे फोन किया चीज बताने के, तो कहा बताओ, कहते कि उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे. मैं कहा कहते कि अगर मैं तेरे को इसके बाद कभी फोन ना करूँ तो मेरे क्या रिएक्शन होगा. मैंने पहले तो देख, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मेरे यही होगा कि कुछ ना कुछ पंगा हो गया तेरी लाइफ में, कुछ हो गया है जिसके कारण तू फोन नहीं कर रहा. तो आई लाइक जस्ट, ठीक है. तो वो कहते मैं तेरे को थोड़ी देर में फोन करता हूँ. जाने कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, कहते 10 मिनट में करते. मैं कहा ठीक है, 10 मिनट तक फोन आता. वो रो रहा होता है, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था. वो पता अपने घर से दूर था, ना पानी ना कुछ, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था. उसके बाद ना फिर वो मेरे को कहता कि मेरी ना लाइफ में कवर है मेरी एक्स, वो बहुत ज्यादा प्यार अभी भी करता. तो मैंने उससे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम सॉर्ट कर सकते हैं. कहते नहीं, मेरे को पहले थी, अब है, दोनों में कुछ भी नहीं चाहिए.
1: एक सेकंड, तो उसकी लाइफ में उसकी एक्स वापस आ गई एंड ही इज टेलिंग यू कि मुझे ना वो चाहिए ना तू चाहिए.
2: बिल्कुल, मेरी क्या गलती थी?
1: फिर तूने क्या बोला?
2: क्या बोलती?
1: तो ही जस्ट सेड कि अब ये नहीं हो सकता, ओके चल टाटा बाय बाय, बस. That's it. ये कितने टाइम पहले हुआ है?
2: एक हफ्ते पहले.
1: हाउ आर यू लाइक कोपिंग विद इट? तेरी जान नहीं जा रही है क्योंकि इसने तो देखो फोन करके बोल दिया कि भाई मैं तेरे को फोन नहीं करूंगा आगे से कभी भी.
2: मैंने इसको कॉल किया, उसको ब्लॉक कर दिया.
1: ब्लॉक कर दिया है भाई, तो कुछ नहीं कर सकती है और मैं भी कुछ नहीं कर सकती. बट अच्छा, ये तेरी जिंदगी से अपने आप ही कट लिया. इस बंदे के साथ होने से बेटर है नॉट बीइंग विद अ गाय लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन. है ना? डू यू टोटली रियलाइज दैट करेक्ट कि दिस गाय इज अ लूजर? ऐसे रैंडम फोन करके बोल रहा है कि 7 महीने हो गए. कोई 7 महीने हो गए थे ना तुम्हें?
2: 3 महीने.
1: ऑल्सो यार, दैट्स लाइक अ रियली बिग टाइम. व्हाट अ डूशबैग. देखो रोशिफाई कर दूं. देयर यू गो, सॉरी,
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: थोड़ा सा बेटर लग रहा है. देखो रोशिफाई कर दूं.

0: presented by Virani Jewelers.
1: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग दर मिर्ची पे चल रहा है वीरानी जूलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन. लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है. हेलो
2: हेलो हाय
1: हाय व्हाट्स योर नेम.
2: हाय माय नेम इज दीप्ति.
1: हाय दीप्ति हाउ आर यू डूइंग टुडे.
2: I'm doing great. How are you?
1: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
2: Happy Navratri to you too.
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: Good, good. It's going great.
1: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ.
1: अरे वाह लखनऊ से हैं. तो let me ask you my next question quickly.
2: Yeah, yeah.
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना ठीक है. Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
2: It's tiger.
1: That's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. You moved to the second round.

0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।
1: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
10: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
11: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
11: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
12: एक ही होता है।
11: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से

0: रघुवीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को फाइनली इस्तेमाल करता है पर्दे पर. यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले. एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: मिर्ची इट्स हॉट.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
6: Tera kya hoga, Kalya?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हाय हाय, पता है ये जो बुटीक की आंटियाँ हैं ना, बहुत बिजी होने वाली हैं। मैं तो पहले ही बता रही हूँ, इसलिए फ़ोन किया है कि जो भी चनिया चोलियाँ बनवानी है इन्हें अभी कर लो, नहीं तो बाद में आप वेटिंग लिस्ट पे ही लगे रहोगे और फिर पुराने कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसमें मज़ा कोई नहीं आता है। माई मासी एक्चुअली पिक्ड अप द फ़ोन एंड कॉल्ड ऑल द वे फ्रॉम लंडन टू से कि बेटा देखो, यहाँ जो है इंडिया में तुम्हारा फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है और हमारा भी लंदन में हो ही गया है, क्योंकि आई थिंक लंदन इज मोर पिछड़ा हुआ देन इंडिया, बट दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर टाइम। तो मासी ऐसे ना ग्रुप कॉल कर रही हैं सब लड़कियों को कि अपनी ना चनिया चोलियाँ सिलवा लो, नहीं तो जो बुटीक वाली आंटी बहुत बिजी हो जाएंगी। एंड लाइक मासी, आपके पास कोई और काम नहीं है जिंदगी में, मतलब हमारी चनिया चोली शुड बी आर प्रॉब्लम लेकिन दैट इज योर प्रॉब्लम, हमारे रिलेशनशिप शुड बी आर प्रॉब्लम लेकिन दैट इज ऑल्सो योर प्रॉब्लम। तो आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उसका चाचा चौधरी कौन है? पर ये मैं ऐसा पूछ नहीं सकती हूँ बिकॉज मम्मी पहले ही डिस्क्लेमर दे देती है कि यू हैव टू बी वेरी नाइस टू मौसी बिकॉज शी इज योर मौसी जी आफ्टर ऑल। तो आपने अपनी बुटीक आंटी से कॉन्टैक्ट कर लिया है या आपने भी पुराने साल के चनिए चोलिए पहनने हैं? जो भी आपकी सिचुएशन है, आई रियली वांट टू नो हाउ यू आर गेटिंग ड्रेस्ड दिस फेस्टिव सीजन, और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो ऑन द ग्राम या फेसबुक। एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैं इंडिया के फेस्टिव सीजन को देती हूँ 5 सितारों में से 4, और एक क्यों नहीं दिया? उसका जवाब सिंपल है, मैं सिंगल हूँ और सारे के सारे रिलेटिव्स मुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी, गरबा नाइट / पूजो टाइम पर पकड़ के ये जरूर पूछते हैं कि बेटा अगली बार तो तुम्हें आना नंबर है, अगले साल हमें गुड न्यूज देना है। एंड तब अगर आपके साथ भी यही होता है, डू व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू डू, आई जस्ट सेड आई एम इंटेंडिंग टू डू दिस इंटायर फेस्टिव सीजन, और मैं वैसे बाकी टाइम ऑफ द ईयर आपको कहती हूँ कि ये चीज नहीं करनी है, और वो है टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। बिकॉज द थिंग इज, हर एक इंसान के पास पॉलिटिक्स के बारे में एक ओपिनियन होता है, करेक्ट? और आप कुछ बोलोगे, 5 जने आपके साथ अग्री करेंगे और 6 जने आपके साथ डिसअग्री करेंगे। अब इस जद्दोजहद ऑफ एक्सप्रेसिंग पॉलिटिकल ओपिनियंस में आपकी शादी बिकम्स ऑलमोस्ट ऑफ नो इम्पोर्टेंस टू एनीवन एनीमोर। समझे मुन्ना? वेरी गुड। अगर आपको ये सजेशन अच्छी लगी है, नहीं भी लगी है, इट डजंट रियली मैटर, आई एम गोना डू इट, बट यू कैन हिट मी अप विद योर सजेशंस ऑन द ग्राम या फेसबुक। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरकेएल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
2: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा कंसिस्टेंट रहती हैं, जैसे मेरे केस में एक हमेशा डड्डू को डेट करना। सोचती हूँ प्रिंस चार्मिंग है, लेकिन निकलता वही डड्डू है, गुड ओल्ड डड्डूज। दूसरी चीज जो मेरी जिंदगी में कंसिस्टेंट है, लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट। मैं पहले 80 किलो की थी, जी हाँ जनाब, 80 से 50 की जर्नी हैज बीन अ फेयरली डिफिकल्ट वन, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एक्सेप्ट जितनी बार भी मैं कोशिश करती हूँ कि स्लीवलेस कपड़े पहन के अपनी गरबा पार्टी अटेंड करूँ, मैं शीशे में जाती हूँ और पहला गाना जो मेरी जहन में आता है दैट इज डोला रे डोला रे डोला रे डोला। मेरे पास एक नहीं दो दो डोले हैं, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मैं स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। आई एम नॉट आर्म शेमिंग माई सेल्फ, मैं बस जानती हूँ कि ऐसी बाजू में ले कि मौसी जी मैं स्लीवलेस कपड़े पहनकर दूसरों पे अत्याचार नहीं कर सकती, खुद पर भी नहीं। बट दैट सेड, यू नो आई हैव रियलाइज कि कोई भी परफेक्ट नहीं है यार इस जिंदगी में, ना हमारी बॉडी परफेक्ट है, ना हमारे रिलेशनशिप्स परफेक्ट है, बट द परफेक्शन लाइज इन एक्सेप्टिंग योर इम्परफेक्शंस। एकदम से ये जो मैं फिलोसॉफिकल हुई हूँ, आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ दैट एज वेल। अगर आपने भी जिंदगी के धक्के खा खा के कोई लाइफ लेसन सीखे हैं, देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल कंपेयर नोट्स। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, मिर्ची वॉटर मैं मुलमारिस में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लग का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो
2: हाय प्रिसिला.
1: हाय व्हाट्स योर नेम.
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल हाउ आर यू.
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है. ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना. ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है. क्विकली
2: अर्शद द्वारसी.
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज
1: आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन.

0: बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
2: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
3: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
4: अगर आप इनमें से नहीं है Zoho Suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये एक बहुत ही क्यूट एंड ट्रू स्टोरी है. मुझे एक बंदा मिला ऑन अ डेटिंग ऐप जिसके साथ मैंने राइट स्वाइप कर दिया होगा 2-3 साल पहले. मैं तो बचपन से पैदाइशी सिंगल हूँ. और उसके बाद फिर 2-3 साल बाद मैंने फिर से राइट स्वाइप कर दिया. तो इस बंदे ने मेहनत करके मुझसे पूछ ही लिया कि रोशी मुझे एक चीज समझ नहीं आई. तब भी मैं तुझसे कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ. प्रॉब्लम क्या है, तू बात क्यों नहीं करी थी? ऐसे पहली बार तूने कॉन्वर्सेशन जब मुझसे शुरू करने की कोशिश की थी तो क्या कहा था? ही सर हाय. आई वाज लाइक देख भाई, मेरे पास ना कम से कम 10-15 लोग होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ऑन अ डेटिंग ऐप. अगर तू ऐसा कुछ बोरिंग कह रहा है जैसे कि हाय, देन आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू. तो अगर एक डेटिंग ऐप पर आप चाहते हो कि आपको अटेंशन मिले, स्पेशली फ्रॉम अ वुमन, देन एक ट्रिक जो आपको हमेशा याद रखनी होगी इज टू कीप योर मैसेज शॉर्ट, स्वीट एंड टू द पॉइंट. हो सके तो फोटोग्राफ के बारे में कुछ पूछ लो, दैट हे यू गॉट अ गिटार इन योर हैंड, गिटार बजाती है क्या, और एनी सच क्वेश्चन. बट जहां आपने हाय बोला वहां बंदी इंटरेस्ट गोज फ्रॉम 10 to 0 इन नो टाइम एट ऑल. तो मेरे इस इंसिडेंट से आप कुछ सीख लीजिए और मुझे अपनी जिंदगी के इंसिडेंट से सीख देने के लिए व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आपने कभी अपने पार्टनर के साथ इस तरह से लड़ाई की है दैट यू एंड अप रीचिंग अ माइक ड्रॉप मोमेंट और उसके बाद लड़ाई खत्म, क्योंकि आपने इतनी कॉर्नी चीज बोल दी है, इसके बाद बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. सो दिस इज अबाउट माई एक्स बॉयफ्रेंड एंड आई. वी वर जो इंटेलिजेंट वाला था, ही एंड आई वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन जो एक आर्ग्यूमेंट बन गई और मैं थोड़ा सा हाँ ठीक है चिल्ला रही थी उस पर और फिर कुछ भी, मतलब आर्ग्यूमेंट बढ़ती गई. टिल ही लुक्ड एट मी एंड सेड, व्हाई आर यू पुशिंग ऑल माई बटन्स रोशी? एंड आई वाज लाइक, मैं तेरे बटन्स पुश करना ही नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ म्यूट का बटन ढूंढ रही थी कि कैसे तेरा मुंह बंद हो जाए, बट वो ही नहीं हो रहा है. एंड देन वी रियलाइज कि क्या माइक ड्रॉप स्टेटमेंट कर रहा है, दैट आई डोंट वांट टू पुश योर बटन्स, आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द म्यूट बटन. अगर आपने कभी ऐसे इंटेलेक्चुअल फाइटिंग की है दैट हैज इन इफेक्ट टर्नड यू ऑन एंड झगड़े के बाद यू एंडेड अप मेकिंग आउट टू मेक अप फॉर दैट फाइट, देन हिट मी अप बिकॉज वी ऑब्वियसली हैव अ लॉट इन कॉमन. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. तो अब सोच क्या रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, हिट मी अप एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ये एक ऐसा सीक्रेट कन्फेशन है जो इस पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता. आई एम फीलिंग बैड अबाउट इट. इट इज नॉट नॉटी और एनीथिंग, बट आई थिंक आई नीड रोशिफिकेशन. अगर आप मुझे ऐसा मैसेज लिखकर भेजोगे, आई हैव नो ऑप्शन बट टू रीच आउट टू यू विद ऑल ऑफ माय लव. मेरे साथ है मेरी मिस्टी कॉलर, बट अगर आपके पास भी कोई सिचुएशन इन लाइफ है विच डिमांड्स रोशिफिकेशन, आप हक से मुझे अपना नंबर भेज सकते हो इंस्टा या FB पर, और मैं उतने ही प्यार से आपको वापस फोन करूंगी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ दबी हुई आवाज में, बिकॉज इट सीम्स लाइक जेन्युइनली शी हैज नॉट टोल्ड एनीवन द सीक्रेट, इज माय मिस्ट्री कॉलर. हेलो बेबी, क्या कह रहे थे आप?
2: मैं कह रही थी मैं 2-3 महीनों के लिए मिटर थी, ठीक है. सब बहुत अच्छा चल रहा था, फेरी थी उसकी तरफ से. उसके बाद क्या होता है, मैं उसको कॉल करता, मैंने 7 o'clock कॉल करती थी. हम लाइक 25 मिनट बात कर, हम कर जाते क्योंकि हम अभी दोनों स्टडी कर, ठीक है. तो लाइक स्टडी भी मैनेज होती है, बिल्कुल सही चल रहा था. लेकिन वो थोड़ी देर पहले ऐसे मैंने 7 बजे फोन किया, सब बढ़िया था. वो कहता मैंने ना चीज बताने तेरे को. कहा बताओ? कहते कि उससे पहले एक क्वेश्चन का जवाब दे. मैं कहा कहते कि अगर मैं तेरे को इसके बाद कभी फोन ना करूँ तो मेरी क्या रिएक्शन होगा? पहले तो देख, मेरे को ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मेरे यही होगा कि कुछ ना कुछ पंगा हो गया तेरी लाइफ में, कुछ हो गया है, तो उसके कारण तो फोन नहीं जाएगा. तो

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, Virani Jewelers presents Mirchi 9 lakh ka haar khel rahe hain hum. Main bole to Priscilla aur mere saath line par hamari agli contestant hai. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's up?
2: Yeah, I'm doing good. How are you?
1: I'm great. Name?
2: Oh, my name is Sachi.
1: Hi Sachi, kya chal raha hai?
2: Bas abhi to navratri chal rahi hai.
1: All right, kaise ja rahi hai navratri? Maza aa raha hai?
2: Nahi, yahan to India miss ho raha hai.
1: Oh, I know. फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लक का हार.
2: ओके
1: ऑलराइट सो सची क्विकली मुझे जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल.
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर. Congratulations! Yay, Sachi!
2: Yeah, thank you so much.
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
2: Yeah, thank you.
1: Alright, thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Laga Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. और अगर आप भी participate करना चाहते हो तो फटाफट से नवरात्रि type करो 9033647244 पर लिखकर अपने पूरे नाम के साथ भेजो अभी के अभी. And you could be the next participant in Mirchi No Laga Haar.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: जिंदगी में रोमांस और पैशन आ ही नहीं रहा है और आप इतने रोमांटिक हो कि आपके सारे कमरे में स्टफ टॉयज हैं, किताबें ही किताबें हैं, बट यू नो व्हाट, फेंगशुई के हिसाब से दैट माइट बी द ओनली थिंग गेटिंग इन द वे ऑफ यू गेटिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ. आपको पता है पहले ना मेरे कमरे में इतने सारे स्टफ टॉयज होते थे, इट यूज्ड टू बी क्रेजी एएफ टिल आई रियलाइज कि फेंगशुई के हिसाब से अगर आपके कमरे में या आपके बेड पे बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं तो आप यूनिवर्स को ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यार मेरा बेड तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मेरा कमरा तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें किसी और की जगह ही नहीं है. इट इज सो ऑब्वियस बट आई कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट फैक्ट. और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने कमरे से toys gayab kiye and I gave them all to charity, I am sure there are lots of happy children out there enjoying those stuffed toys. वैसे ही डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप एंड राइट स्वाइप, राइट स्वाइप एंड राइट स्वाइप, आप ट्राई करके देखो इसे एंड आई हैव अ फीलिंग इट माइट वर्क फॉर यू टू. और वाइल यू आर एट इट ना, ये जो मैंने अभी टंग ट्विस्टर बोला है ना, इसे 5 बार बोल के दिखाओ, राइट स्वाइप पे राइट स्वाइप, राइट स्वाइप पे राइट स्वाइप. मैं तो ट्राई भी नहीं कर रही हूँ, आप ट्राई करो इफ यू मैनेज टू डू इट 5 टाइम्स प्लीज.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है। सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं वे तुमियो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1। दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।
2: नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माई गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये परसेप्शन किसके लिए क्रिएट कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में। मैं आपको बोलूँ नहीं, आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर, बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज़ दे आर नॉट मी।
0: शायद इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में, दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot.
4: Number 14.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे। और यहीं प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं हैराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन। इट्स डैम एक्साइटिंग। एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब। मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। लेट्स सी हु इज ऑन लाइन विद मी। हेलो।
3: Hi, Priscilla.
2: Hi, what's your name?
3: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
2: Hi, Preet. What's up?
3: Everything is good. How are you doing?
2: I'm great. So, are you ready to play Mirchi No Luck Kahar and Azmao your luck?
3: Sure, why not?
2: Are you nervous?
3: No.
2: All right, that's great. नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर। Alright, are you a movie buff?
3: Yes.
2: Alright, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
3: Chole.
2: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
3: Thank you.
2: It was easy, right?
3: Yeah, it was very easy.
2: Alright, so अब आप next round में चले गए हो। नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए।
3: थैंक यू, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर।
2: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
3: नवरात्रि इज गुड, सो फार इज गुड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज़ दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल द पूजा एंड ऑल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड।
2: ओके, ऑलराइट,
3: वी डोंट सेलिब्रेट बट वी टेक पार्ट इन, वी जॉइन फ्रेंड्स।
2: ग्रेट ग्रेट। आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
1: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 5।

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार मजा आ रहा है, कुछ अलग आवाज है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहां से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वाज लक बाय चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोलिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैं अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान मेरा, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मारती, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय,
0: ये आज भी सुनते हैं तो हम
3: किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय,
0: ये आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते।

उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी। उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी। और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया। एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉप 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans. Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सो जो एक नया लड़का इंडस्ट्री में आता है, बहुत ही नॉर्मल लुकिंग होता है, एंड ही कम्पीट्स विद अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र एंड सो मेनी ऑफ देम, और फिर उसकी डेब्यू फिल्म को उसी साल मिल जाता है फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म. पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम. आज भी 1975 में रिलीज्ड एक बहुत ही कमाल की फिल्म, और मैं बात कर रही हूँ फिल्म रजनीगंधा की. कौन थे इसमें? इसमें थे अमोल पालेकर, हु एक्चुअली ही डेब्यूटेड फ्रॉम दिस फिल्म. एंड लोगों को बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशंस नहीं थे, क्योंकि उस समय बच्चन साहब की फिल्म, धर्मेंद्र पाजी की फिल्म, सबकी फिल्में रिलीज हो रही थी, और अमोल पालेकर की फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल जाएगा. दैट वॉज नॉट अ सरप्राइज, बिकॉज ऑडियंस ने जाकर के हॉल में ना इस फिल्म को ऑलरेडी सुपर डुपर हिट कर दिया था. आज इसी फिल्म रजनीगंधा की बात होगी. श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शशि कपूर साहब ने रेकमेंड किया था कि ये जो फिल्म है ना, इसकी कहानी ऑलरेडी विनिंग कहानी है, लेकिन बासु जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, तो ही सेड कि बासु ये तभी होगा अगर तुम एक न्यू कमर को, एक न्यू फेस को लेके आओगे। वेल, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। इस फिल्म से डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने, लेकिन बासु चैटर्जी हु एक्चुअली मेड द फिल्म, उन्होंने कभी भी इस फिल्म के जो कैरेक्टर्स थे, जो मेन लीड थे, वो अमोल पालेकर के लिए नहीं लिखे थे। उन्होंने लिखे थे बच्चन साहब के लिए, और अगर बच्चन साहब रिफ्यूज कर देते तो ही हैड शशि कपूर इन माइंड। उन्होंने शशि कपूर को बैठा करके जब पूरी कहानी पढ़ी ना, तो शशि कपूर सेड कि ये एक विनिंग कहानी है, लेकिन हाँ, इसमें तुम्हें हम जैसे एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं, एक न्यू कमर को लाना पड़ेगा। दैट वॉज हाउ इस फिल्म में अमोल पालेकर आए। और आपको पता है 1975 जिस ईयर में शोले रिलीज हुई, चुपके चुपके रिलीज हुई, उसी साल रजनीगंधा को मिला था फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग दार। मिर्ची पर चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन The grand prize of gold kachin. Let's see hamari agli contestant ka kya naam hai. Hello.
3: Hello, hi.
2: Hi, what's your name?
3: Hi, my name is Deepthi.
2: Hi, Deepthi. How are you doing today?
3: I'm doing great. How are you?
2: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
3: Happy Navratri to you too.
2: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
3: गुड गुड, इट्स गोइंग ग्रेट।
2: ऑलराइट, कहाँ से हो आप इंडिया में से?
3: मैं यूपी लखनऊ।
2: अरे वाह, लखनऊ से हैं। तो लेट मी आस्क यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली।
3: या या।
2: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? विद इन सेकंड्स यू हैव टू आंसर कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल एनिमल।
3: It's tiger,
2: that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
3: Thank you.
2: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
1: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.
4: Listener mein, back to back gana sunega. Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किसी ने नहीं सोचा था कि मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में रिलीज ये फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले जाएगी 1975 में। वो भी ये एक ऐसा साल था जिसमें हमने शोले की रिलीज देखी, चुपके चुपके की रिलीज देखी, बहुत सारी हिट फिल्में देखी, बट रजनीगंधा वॉज द वन दैट एक्चुअली वन एवरीवन्स हार्ट एज वेल। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। अब होता यह है कि डायरेक्टर बासु चैटर्जी एक न्यू कमर अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा को लेकर के आते हैं। उनको फिल्म के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलते, फिल्म के लिए जब रिलीज हो जाती है तो हॉल नहीं मिलते, तो उन्हें थक हार करके मुंबई के आकाशवाणी सिनेमा में इस फिल्म को रिलीज करते हैं। फिर क्या, बाय वर्ड ऑफ माउथ, बिकॉज उस टाइम पे ना फेसबुक होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना यूट्यूब होता था, ना ही केबल चैनल्स होते थे, ओटीटी प्लेटफॉर्म तो ऑफकोर्स नहीं होते थे, सो बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म लोगों तक पहुंची और उसके बाद इट वॉज अ मैसिव हिट। तो सोचो, डिफरेंट हॉल्स में ना रिलीज हो करके भी अगर सिर्फ एक सिनेमा हॉल में रिलीज हो करके कोई फिल्म एक अच्छा काम कर सकती है, तो एक्चुअली में इट्स अ लेसन कि अगर कंटेंट अच्छा है तो लोगों तक पहुंचेगा और हिट होगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज Only on Mirchi. It's hot.
1: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज as a film review person कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ. अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतूराज Only on Mirchi. It's hot.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
2: अब मिर्ची खा.
4: Radio Mirchi. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

उस जमाने की बहुत फेमस बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस होती थी अपर्णा सेन। उन्होंने इस फिल्म के लिए इतने सारे पैसे मांग लिए और फिल्म के एक्टर को भी चेंज करने की डिमांड मांग ली कि इतनी बेहतरीन फिल्म से उनको अलविदा कह दिया गया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म रजनीगंधा टुडे। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म फेयर अवार्ड मिला इस फिल्म को इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फिल्म। और सोचो 1975 एक ऐसा साल था जिसमें शोले भी रिलीज हुई थी और बहुत सारी आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई थी। रजनीगंधा एक ऐसी फिल्म थी जिसे डेब्यू किया था अमोल पालेकर ने और विद्या सिन्हा ने। ये दोनों ही न्यू फेसेस थे। और शशि कपूर साहब ने ना मूवी के डायरेक्टर बासु चैटर्जी से कहा था कि तुम्हारी विनिंग स्टोरी है, तुम्हारी कहानी में बहुत दम है, इसको डेफिनेटली अवार्ड मिलेगा, लोगों को बहुत पसंद आएगी, बशर्ते तुम एक नया चेहरा लेकर के आओ। बासु चैटर्जी ने अपना हीरो अमोल पालेकर ढूंढ लिया था। फिर वो गए बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस अपर्णा सेन के पास। अपर्णा सेन ने कहा कि भाई मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और मुझे ये अमोल पालेकर के साथ काम नहीं करना, एक एस्टैब्लिश एक्टर लेके आओ। बासु चैटर्जी ने उनको टाटा बाय बाय कह दिया एंड देन केम विद्या सिन्हा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। रजनीगंधा के गाने भी है मेरे पास, एक एक करके सुनाऊंगी, सो कम राइट बैक।

0: हम कहा तुम कहा हम कहा ताल कहा सम कहा तुम कहा हम कहा तेरे कर तुम नान कर तुम तेरे कर तुम नान कर तुम हम तुम नदाहत की पाता लताफात पतापात मेरा कस करामत
1: ताते चिता हम ताते चिता ताते चिता हम थैया थैया थै तकटा दुम तकटन्या
2: सपने में देखा सपना ओ सपने में देखा सपना।
3: ऋषिकेश दा की ना दो खास बात थी, एक तो वो लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करते थे अपनी फिल्मों में और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते थे। ये जो गाना आपने सुना इज़ फ्रॉम द फिल्म गोलमाल। आपको पता है ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी जिसके सीक्वेंस अभी तक हम बनते देखते हैं। वेल, ये फिल्म 40 दिन में बन करके ख़त्म हो गई थी और वो भी उनके खुद के बंगलों पे बांद्रा में। बिकॉज ही थॉट कि भाई लोकेशन से ज़्यादा वो ना स्क्रिप्ट में बिलीव करते थे। कहानी दमदार होनी चाहिए और कहानी आम आदमी की होनी चाहिए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कान पकड़ करके शशि कपूर ऋषि कपूर को इस पिक्चर के सेट पे ले आए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये गाना है फ्रॉम द फिल्म कभी कभी। मूवी को बनाने वाले यश चोपड़ा साहब, और यश साहब ने ये जो विकी का रोल था ना इस फिल्म में, ये ऋषि कपूर को सोच के ही बनाया था। अब ऋषि कपूर वाजंट वेरी एक्साइटेड टू डू दिस फिल्म, तो उन्होंने ना मना कर दिया था। जब ये बात यश जी ने शेयर की उनके अंकल शशि कपूर से, तो शशि कपूर ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ऋषि को कौन पकड़ के सेट पे ले आऊंगा। हुआ भी यही। वो जबरदस्ती लेकर के आगे ऋषि कपूर को। अब ऋषि जी ने कहा कि उनकी तो दो दिन के अंदर फ्लाइट है टू न्यूयॉर्क, जहां वो दो महीने के लिए छुट्टी मनाने जा रहे थे। तो आपको पता है क्या किया यश चोपड़ा जी ने, उन्होंने उनको डायरेक्टली सेट पे ले गए और ऋषि कपूर से डेढ़ दिन के अंदर हजारों शॉट ले लिए गए जो कि इस मूवी में यूज हुए फिर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने की बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: ऑलराइट, मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं मुरतब प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लक्का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन। लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं। हेलो,
2: हाय प्रसला।
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल।
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great, great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: Alright, so are you ready?
2: Yeah, happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So, मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure, I'll try.
1: Alright, so Bollywood की एक फिल्म है मुन्ना भाई MBBS, उसमें character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली,
2: अर्शद द्वारसी।
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर, कांग्रेचुलेशंस। ये
2: या वेरी एक्साइटेड, या आई वाज जस्ट, या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन, आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड।
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है, सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर। ओके,
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला।
1: ऑलराइट, बाय बाय।
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किसी को भी दरवाजा नॉक करने तक की परमिशन नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना ये है फ्रॉम द फिल्म अमर प्रेम, जिसके गाने आज भी सुपर डुपर हिट हैं और इनका म्यूजिक बनाने वाले आर डी बर्मन साहब। सो पंचम दा को जब इस फिल्म अमर प्रेम की ब्रीफ मिली तो उन्हें समझ में आया कि ये फिल्म सिर्फ एक एक नॉर्मल सी रोमांटिक स्टोरी नहीं है, इट्स एन इंटेंस रोमांटिक इमोशनल स्टोरी। तो इनके गानों के लिए, इसके म्यूजिक के लिए कहते हैं कि पंचम दा सुबह 9 बजे अपने कमरे में, अपने म्यूजिक रूम में चले जाते थे, दरवाज़ा लॉक कर लेते थे और बीच में जब उनको खाना खाना होता था, भूख लगती थी, तो कोई भी दरवाज़ा खटखटा नहीं सकता था। उनकी थाली उनके डोर के बाहर रख दी जाती थी कि जब जब उन्हें भूख लगेगी वो दरवाज़ा खोलेंगे और अपना खाना अंदर ले लेंगे। रात के 9 बजे तक ये काम होता था। He used to go inside at 9 a.m. and used to work till 9 p.m. locked in a room. और ऐसा कई दिनों तक चला जब तक इस फिल्म के म्यूजिक इतना खूबसूरत निकल के नहीं आया। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी

सनी देओल पे पिक्चराइज्ड है ये गाना, जो कि है फ्रॉम द फिल्म अर्जुन। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रवल, और इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब लिखने वाले थे वन एंड ओनली जावेद अख्तर साहब। लेकिन आपको पता है कि जावेद साहब को इस फिल्म का आइडिया कहाँ से आया? वो और राहुल रवल एक्चुअली में पार्टी कर रहे थे, पार्टी नहीं, पिकनिक कर रहे थे लोनावला में, और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। जब जावेद साहब ने वो पढ़ना शुरू किया तो उस जमाने के मुंबई के एक गैंगस्टर की कहानी निकली थी। बस जावेद साहब को कंटेंट मिल गया और उन्होंने ये फिल्म बना दी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी फिल्म में सिर्फ मेल सिंगर्स थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और ये जो गाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म याराना। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि फिल्म के सारे गाने जो हैं वो सिर्फ मेल प्लेबैक सिंगर्स ने गाए। एक गाना गाया था इस फिल्म का रफ़ी साहब ने, और बाकी जो पांच गाने थे, बिकॉज देयर वर सिक्स सॉन्ग्स, वो किशोर दा ने गाए। ऐसा जनरली होता नहीं था तब, क्योंकि रोमांटिक गाने होते थे। लता जी का गाना तो डेफिनेटली फिल्मों में डाला जाता था, इफ़ नॉट लता जी तो आशा ताई का गाना होता था। एंड दोनों का मतलब डुएट गाने तो डेफिनेटली होते थे, बट याराना इस फिल्म में एक भी डुएट गाना नहीं था, एक भी फीमेल प्लेबैक सिंगर नहीं थी। पुरानी जीन्स पे कुछ ऐसे ही अनकही बातें जो आपने शायद कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं सुनी, वो ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ मैं। सो बस कहीं भी मत जाना, मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेंद्र कुमार ने फिर कभी भी अपने सबसे खास दोस्त मनोज कुमार से बात नहीं की। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना अभी आपने सुना, ये है फ्रॉम द फिल्म लव स्टोरी। एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने के बाद रातों रात बड़े स्टार बन गए थे कुमार गौरव एंड विजेता पंडित, दोनों के डेब्यू फिल्म थी ये। ये फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे राहुल रविल और इस पे पैसा यानी इसके प्रोड्यूसर थे कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार। अब हुआ ये कि राजेंद्र कुमार चाहते थे कि उनके बेटे की पहली फिल्म है और वो मनोज कुमार डायरेक्ट करें जो उनके बेहद करीबी दोस्त थे, लेकिन मनोज कुमार ने बहुत पोलाइटली उनको रिफ्यूज कर दिया ये कहते हुए कि अब उनका खुद का होम प्रोडक्शन है और वो अपनी फिल्म क्रांति में बिजी है। ये बात राजेंद्र कुमार को बेहद दिल पे चुभी क्योंकि मनोज कुमार को उनकी पहली फिल्म दिलवाने वाले राजेंद्र कुमार थे एंड हिज फर्स्ट फिल्म वॉज हरियाली और रास्ता। सो ही थॉट कि जब मैंने उनको तब पहली फिल्म दिलाई थी तो मेरे बेटे की पहली फिल्म डायरेक्ट करेंगे मनोज कुमार, विच ही डिड नॉट। और इसीलिए दोनों ने इस इंसिडेंट के बाद कभी एक दूसरे से बात नहीं करी। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

पहले 1 लाख मांगे तो यश चोपड़ा साहब ना जोर से हंस दिए उनके मुंह पे, उसके बाद 3 लाख देने पड़े। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। सलीम जावेद साहब की फिल्म जब उन्होंने लिखी जंजीर, बच्चन साहब के साथ जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर मैसिव हिट हुई। अब ना सलीम जावेद साहब स्टैब्लिश हो गए थे एज फिनोमिनल राइटर्स कि ये दोनों जब कहानी लिखते हैं तो मूवी सुपर हिट हो जाती है। लेकिन अब जो मैं बात बता रही हूँ वो जंजीर फिल्म के रिलीज होने के पहले की है। स्क्रिप्ट का नाम यानी फिल्म का नाम होता है दीवार, और ये जो दीवार होती है ना इसको लेकर के पहुंचते हैं सलीम जावेद यश चोपड़ा के घर और उनसे कहते हैं कि ये स्क्रिप्ट हमने आपके लिए बनाई है, ये सक्सेसफुल मूवी है, ब्लॉकबस्टर है, मेजर हिट है। तो भाई सलीम जावेद साहब ने इस स्क्रिप्ट के लिए 1 लाख रुपए मांगे। यश चोपड़ा साहब उनके मुंह पे हंस दिए और कहने लगे क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या तुम दोनों, क्योंकि ये अमाउंट राइटर्स के लिए किसी ने कभी तब सुना ही नहीं था। सलीम जावेद साहब वापस आ गए, ये स्क्रिप्ट लेकर के वो किसी और के पास नहीं गए, अपनी ड्रॉअर में रख दिया और जंजीर के रिलीज होने का वेट किया। जंजीर के रिलीज होते ही जो फैंडम देखा गया फॉर द फिल्म फॉर बच्चन साहब, उसके 2 दिन के बाद यही स्क्रिप्ट लेकर के सलीम जावेद पहुंचे फिर से यश चोपड़ा के पास और कहा इस बार 3 लाख फॉर दीवार, और यश साहब ने दिए भी 3 लाख रुपीज। वेल, इसी फिल्म दीवार का गाना कमिंग ऑलराइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन आल्सो फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट

0: 3.5 मिर्चीज के साथ अज्जू बेबी यू रॉक स्टार वी लव यू
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चले, जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट सिर्फ गाना नहीं है, जीवन की सच्चाई है जो बस

0: अगर लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो ना, लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल. और वो क्या है?
1: छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले.
0: एब्सोल्युटली, जीवन के दिन छोटे ही सही, हम भी बड़े दिल वाले. लता जी के आवाज में गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं जाती हूँ, कल मिलने फिर से आती हूँ. इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHREYA विद लव. बाय.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot,

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। रेडियो मिर्ची, इट्स
1: ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2, इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Mirchi, fresh maal.
2: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग। मिर्ची पे चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन। लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है। हेलो,
3: हेलो, हाय,
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज दीप्ति।
2: हाय दीप्ति, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
3: I'm doing great. How are you?
2: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
3: Happy Navratri to you too.
2: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
3: Good, good. It's going great.
2: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
3: मैं यूपी लखनऊ।
2: अरे वाह, लखनऊ से हैं। तो let me ask you my next question quickly.
3: Yeah, yeah.
2: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
3: It's tiger.
2: That's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
3: Thank you.
2: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
1: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का, अजय देवगन की फिल्म में अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

काशीपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अटैचमेंट छोड़ना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, चलिए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कुछ दिनों पहले ना मैं कबीर के दोहे फिर से पढ़ रहा था, बड़ा मजा आया। तो एक बड़ी प्यारी रचनाएं लाइनें उनकी जो मैंने पढ़ी कि माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो बेसिकली हमारे जो डिजायर्स वो कभी खत्म नहीं होते, और नवरात्रि के सिलसिले में जब हम बात कर रहे थे, आपने जो कहा था कि अष्टभुजाओं के अलग अलग पावर्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक मुझे लगा कि एक होता है पावर टू डिटैच, जिसके बारे में मुझे बता रही थी, जो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो डिजायर्स होते हैं, जो वॉन्ट्स होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते। तो ये इतना मुश्किल क्यों होता है अटैचमेंट को छोड़ना?
4: डिजायर्स अलग है, अटैचमेंट अलग है। डिजायर्स भी आप कह रहे हैं खत्म नहीं होते, उसका कारण ये है कि जो भी डिजायर होती है वो कुछ ना कुछ हमें प्राप्ति करा रही होती है।
3: जी,
4: कुछ तो मिल रहा होता है ना।
3: हाँ।
4: मन को भोगों की आदत हो गई है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: तो मन को जो खुशी चाहिए या प्यार चाहिए उसको कहीं से मिल रहा है।
3: जी।
4: कोई व्यक्ति है, कोई वैभव है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है। हाँ। तो जहाँ से भी मिल रहा है, भले टेम्पररी भी है।
3: हाँ।
4: लेकिन मिल तो रहा है ना।
3: बिल्कुल।
4: तो जब मिल रहा होता है तो उसकी जो इच्छा है वो और बढ़ जाती है।
3: हाँ, कि और मिले, और चाहिए,
4: और चाहिए, क्योंकि जब वो मिलता है तभी उस चीज की आपको तृप्ति होती है, थोड़े समय की होती है। फिर वो चीज डिजायर्स के साथ क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है।
3: सही बात है।
4: कोई भी चीज है, चाहे वो वस्तु है, पोजीशन है।
3: हाँ।
4: आज आपका पे पैकेज भी है।
3: हाँ, बिल्कुल। ज्यादा ही चाहिए, कम किसको चाहिए।
4: कमी नहीं होगी आपके पास।
3: हाँ, लेकिन
4: किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, पर वो खुशी तभी देगा जब उसके अंदर कुछ बढ़ेगा, कुछ इंक्रीमेंट होगा, और फिर इन चीजों का एडिक्शन होने लग जाता है। तो इसीलिए मन, जो आपने कहा कबीर ने बहुत अच्छी बात कही कि मन, मन को मन मनाभव, मतलब मन को जब हम परमात्मा में लगा करके अपने को उससे भरते हैं,
3: अच्छा,
4: तो ही हम इच्छाओं से परे जा सकते।
3: एक बार फिर से कहिए, मन को
4: मन मनाभव, मन को मेरे में लगाओ।
3: अच्छा, मन को मन मनाभव, मन को इच्छा में नहीं,
4: मेरे में लगाओ,
3: मेरे में लगाओ,
4: क्योंकि परमात्मा,
3: परमात्मा में लगाओ,
4: आपको उस चीज की प्राप्ति होगी। इच्छा और आवश्यकता में फर्क होती है।
3: जी, बिल्कुल। नीड्स एंड वांट्स,
4: नीड्स रहेंगे, लेकिन नीड्स को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, नीड्स आपकी पूरी हो सकती है, नीड्स आपके साल की आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इच्छाएं जो है वो कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि आप उससे मन की खुशी ले रहे हैं।
3: जी।
4: तो जब तक आप मन को उस परमात्मा में नहीं लगाते, कोई भी किसी भी एज में जब तक आप नहीं लगाते, तब तक आपको वो अतीन्द्रिय सुख की, प्यार की, खुशी की भर आपको मिलता ही नहीं है कहीं से।
3: बिल्कुल।
4: जब आपको मिलेगा नहीं तो आप कहाँ ढूंढेंगे, भोगों में ही ढूंढेंगे।
3: सही बात है।
4: चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, घूमने में हो, काम में हो, पोजीशन में हो, हर जा उनमें से किसी भी चीज में नहीं है।
3: जी।
4: कोई पोजीशन गलत नहीं है।
3: हाँ।
4: लेकिन वो पोजीशन है देने के लिए।
3: हाँ।
4: और अगर आप खाली होंगे तो वही पोजीशन हो जाए
3: लेने के लिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमोशन को संभालना खुद को संभालना होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने मुझे बहुत खूबसूरत किशोर कुमार का गाया हुआ एक गीत इसके बारे में मुझे याद दिला दी। उसमें दो लाइनें हैं और दोनों लाइनें बहुत खूबसूरत है। अकेले में देखें तो अलग लगती हैं और साथ में देखें तो अलग ही मीनिंग निकलता है। तो पहली लाइन है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो इसमें लगता है कि यार हमेशा चाह बढ़ती रहती है, और जो आप कह रही हैं कि आदत लग जाती है, और चाहिए और चाहिए। लेकिन दूसरी लाइन उसमें है जो इसको बिल्कुल कंप्लीट करती है, वो कहते हैं कि जिंदगी फिर भी यह खूबसूरत है, तो जितना उतने में खुश हैं हम। बहुत खूबसूरत बात है,
4: ये वही कर सकता है जो अंदर से संतुष्ट है।
3: बिल्कुल,
4: कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। ये भी एक सफलता की निशानी होती है। सफलता सिर्फ फाइनेंशियल सफलता नहीं होती, लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं भले थोड़ा है लेकिन थोड़े में भी अगर संतुष्ट है तो ये भी एक निशानी है कि वो सफल व्यक्ति है।
3: हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Charge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डिटैचमेंट का असली मतलब क्या होता है, चलिए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो मुझे एक चीज बताइए कि चीजों से, व्यक्तियों से, अनुभवों से हम अपने आप को अटैच कर लेते हैं। डिटैच करना आप कह रहे हैं कि वो आदत सी बन जाती है, इसलिए मुश्किल होता है। अब इसे डिटैच कैसे हूं?
4: डिजायर अलग चीज है, डिटैचमेंट अलग चीज है। अभी हमने जो बात करी वो डिजायर के लिए। डिटैचमेंट को हम कहते हैं न्यारा होना।
3: जी,
4: आप मन से किसी चीज से न्यारा होते हैं कि वो चीज आपको ओन नहीं कर सके।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: अभी अटैचमेंट और डिटैचमेंट, अटैचमेंट है चाहे वो व्यक्ति से है चाहे वो वस्तु से है, उसकी निशानी है कि जब वो हिलेगा तो आप भी हिलेगा,
3: आप भी हिलोगे। हाँ,
4: ये पहला साइन है।
3: हाँ, बिल्कुल।
4: अटैचमेंट का साइन क्या है? जैसे ये दो हाथ अटैच है।
3: हाँ,
4: अब ये हिलेगा तो इसका इम्पैक्ट इस पर पड़ेगा। ट्रेन है।
3: हाँ,
4: इंजन से सारे डब्बे अटैच है।
3: बिल्कुल।
4: इंजन अगर पटरी से गिरेगा तो डब्बों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
3: बिल्कुल।
4: तो अटैचमेंट के साइन है कि अगर आप किसी व्यक्ति से, हमें लगता है प्यार है, प्यार अलग चीज होती है, अटैचमेंट अलग चीज होती है। प्यार लव है।

0: अटैचमेंट मोह है, मोह में दुख होता है।
1: अच्छा,
0: प्यार में दुख नहीं, अनकंडीशनल वो चीज होती है।
1: हम तो हमेशा समझते थे प्यार और मोह एक ही चीज है।
0: स्नेह अलग है,
1: प्यार अलग है और मोह अलग है।
0: अटैचमेंट में तो क्या होता है, आपके दुख में मेरा दुख, आपके सुख में मेरा सुख।
1: क्या बात है, बहुत बड़ा।
0: मैंने अगर चाहे पेरेंट चाइल्ड भी है, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ, उसको कहते हैं अटैचमेंट। लेकिन स्नेह होता है कि आप भले दुख में हैं, समझो आज आप चिंता है, आप परेशान है, लेकिन उस चीज का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना पड़े
1: तो आप उसकी मदद कर पाएंगे,
0: तो आप उसकी मदद कर पाएंगे, आप उसको स्नेह दे पाएंगे, आप उसको सहयोग दे पाएंगे, उसको भी ऊपर उठा पाएंगे।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Marriage Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जिंदगी में डिटैचमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आइए इसकी वजह समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो इसमें जो मूल बात ये आती है कि डिटैचमेंट जरूरी क्यों है,
4: डिटैचमेंट का मतलब क्या है। डिटैचमेंट न हम व्यक्ति से हो रहे हैं, न हम गोल से हो रहे हैं, हम तो डिटैचमेंट, जैसे अगर आप किसी स्पोर्ट की बात कर रहे हैं
3: जी,
4: तो उसमें स्पोर्ट से थोड़ी डिटैच होना होता है।
3: अच्छा,
4: लेकिन स्पोर्ट है हाँ, तो उसमें हार जीत तो होगी
3: हाँ, तो उस इमोशन से डिटैच होना है।
4: अब हार जीत के समय पर हार हुई तो आप कई बार आजकल देखते हैं वो कभी कभी दिखाएंगे कि वहीं बैट भी तोड़ दिया या टेनिस रैकेट है तो हाँ, उसको वहीं पर ही कर रहे हैं, तो दिखाते कितना वो इमोशन, पर वो एक अच्छा एग्जांपल तो सेट नहीं कर रहा।
3: सही बात है।
4: और ऐसे ही क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है बना हाँ, देखे
3: आपको लोग देखते हैं।
4: एक गेम है, गेम में आपको पता भी है क्योंकि हारेगा एक जीतेगा। अगर आज एक गेम

0: टीम को आप स्टेबिलिटी से नहीं ले पाते उस हार जीत को, तो फिर जीवन में कोई और विघ्न आएगा तो क्या होगा। सो डिटैचमेंट इज कि चाहे वो लॉस था चाहे वो विन था, लेकिन आप स्टेबल थे। लॉस था तो आप बहुत ज्यादा उदास हो गए, अग्रेसिव हो गए, वहीं पर ही अपने रैकेट को बीट करने लगे, और जब आप जीते तो आप इतने ज्यादा एक्स्टैटिक थे। वो जो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, उसके जगह जो हम कहते हैं स्टेबिलिटी, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सर्दी गर्मी, सब में समानता।
1: क्या बात,
0: ये एक निशानी होती है, एक योगी की निशानी होती है। सो डिटैचमेंट इज नॉट फ्रॉम द गोल, इट्स नॉट फ्रॉम द पर्सन, इट्स नॉट फ्रॉम द स्पॉट, इट इज ओनली फ्रॉम दैट इमोशन, नेगेटिविटी।
1: बहुत खूबसूरत है, और मुझे फिर जैसा कि मैं अक्सर करता हूँ, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत मुझे याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी की यही रीत है, कभी हार है तो कभी जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है हंसी। बिल्कुल आप वही बात कर रही हैं कि डिटैचमेंट इज नॉट टूवर्ड्स द गेम, इट्स थ्रू द इमोशन। वो जो खुशी है हार है, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये तो जिंदगी में चलता रहेगा, अगर आप उससे थोड़ा डिटैच हो जाएं तो शायद आपकी जो आपका जो सफर है वो बेहतर होगा।
0: कहते हैं ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, ये वक्त भी बीत जाएगा
1: जी।
0: तो अगर आप दुखी हैं,
1: हाँ,
0: और आप ये लाइन करते हैं कि ये वक्त भी बीत जाएगा, तो आपको हिम्मत देता है।
1: हाँ।
0: और अगर आप बहुत खुश हैं, तो भी अगर आप कहते हैं कि ये वक्त बीत जाएगा, तो वो आपको ग्राउंडेड रखता है, आपको पता है कि कोई भी घड़ी सदा नहीं रहती।
1: सही बात, बहुत बहुत खूबसूरत।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्यार और एक्सपेक्टेशन के बीच का कनेक्शन क्या है? चलिए इस सच को समझने की कोशिश करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, ये आप कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। सुनने में अच्छा भी लगता है और शायद यही सही तरीका है, लेकिन जहाँ पर प्यार है वहाँ एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है आ ही जाता है।
4: सी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये समझा है कि एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं तो ये एक हर्ट का दरवाजा खोलता है, दुख का दरवाजा खोलता है। और हम कई बार कहते हैं ये नेचुरल है, ये पर इतना नेचुरल नहीं है। आप देखें, अगर समझो आज आपका एक मित्र है, आपका दोस्त है, वो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आप सारी रात उसके साथ वहां पर रुकते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आप ये इसलिए करते हैं क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है। आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो भी ऐसा करेगा, लेकिन बस आप इतना सा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आप जब इतने बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उसको कम से कम एक फोन तो करना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल, आ नहीं पाया,
4: मेरे साथ सारी रात टाइम नहीं बिता पाया, मैं तो रातों रात उसके साथ हॉस्पिटल में रुका था, पर कम से कम एक फोन तो उसका
3: आता है, ये दिमाग में हमेशा ख्याल आता है।
4: अच्छा, अभी आप वहाँ पर देख लें, समझे कोई बेगर है, भिखारी है, आप रोज उसको कुछ ना कुछ देकर के वहां से निकलते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, आपका दिवाला निकल जाता है, फिर आपको संकल्प आता है कि उसको आज मेरे बुरे वक्त में मुझे कुछ तो देना चाहिए।
3: नहीं, ऐसा तो नहीं आता।
4: देखिए, मना है तो ये सारा मन का खेल ना, आप उसको भी रोज दे रहे थे, लेकिन आप हमेशा कह रहे थे कि जो हमें ये सिखाया जाता है ना, कर्म कर, नेकी कर और दरिया में डाल।
3: जी बिल्कुल,
4: कर्म कर और फल की इच्छा नहीं कर, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हमने जो किया किसी के लिए भी किया, और ये देखो आपको उस भिखारी से नहीं आई, लेकिन अपनों से आ जाती।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: सोना खरीदने के सोच इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक रीड रोड, इज़लिन।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
9: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
10: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.
11: Rang Reza. Rang Reza.

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिटैचमेंट क्या इमोशंस को सप्रेस करना होता है या उन्हें समझकर रिलीज करना? आइए क्लैरिटी लाते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ना डिटैचमेंट को सप्रेशन ऑफ इमोशन भी करते हैं। वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं और उनको लगता है भैया मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बात ही नहीं करनी है। वो विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को इतना सप्रेस कर रहे हैं कि उनको लगता है वो डिटैच हो गए। तो ये भी इसका मुझे

0: पावर है, डिटैचमेंट पावर है, और किनारा करना वीकनेस है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
5: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
6: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
8: Paid for by Desi Blue, desiblue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.

0: आज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: एक क्वाइट पोजीशन हमें स्ट्रांग बनाती है या फिर और ज्यादा अटैच्ड? चलिए इस एंगल को समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: एक बार जावेद अख्तर ने किसी इंटरव्यू में कहा था या उनकी किताब में लिखा हुआ है कि आज जो वो बने हैं वो अपने स्ट्रगल्स के कारण बने हैं। एक समय ऐसा था कि उनके पास ना रहने के पैसे थे ना खाने के पैसे थे, और वो बहुत अपने जो अब्बू हैं उनके साथ उनके बहुत डिफरेंसेस रहते थे, तो उनसे वो पैसा लेना सही नहीं समझते थे। तो वो जो स्ट्रगल का पीरियड रहा उस कारण से उन्होंने बहुत सीख पाई, और उसके कारण आज वो जब वो अपनी जिंदगी में पीछे देखते हैं उनको लगता है कि भाई जो मैं आज बना हूँ उसी कारण बना हूँ, और देयरफॉर मैंने जिंदगी में बहुत सारे लेसन्स लिए हैं। अब कहीं ना कहीं जब मुझे इतनी प्रॉब्लम स्ट्रगल के बाद ये सक्सेस मिली है, और आपको पता है मैंने वो दिन भी देखे हैं, तो ये अटैचमेंट होना तो बिकॉज इसके लिए मैंने स्ट्रगल किया, इस सक्सेस के लिए मैंने काम किया और आज मुझे सक्सेस मिला। जब मुझे सक्सेस मिल जाए तो मैं बोलूं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये कैसे हो सकता है? जब मैंने स्ट्रगल किया है मुझे वो मिला है जिसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, हाउ इज इट पॉसिबल टू डिटैच योरसेल्फ?
6: हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए? कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं, हमने इस चीज को अक्वायर किया, अपने मेहनत से अक्वायर किया और उसका हम सुख भी ले रहे हैं। पर सत्य तो ये भी है ना कि इसमें से कुछ हमारे से छूट भी सकता है
5: और चला भी जाएगा।
6: जा सकता है कि नहीं, आज मैंने बहुत मेहनत करके कोई पोजीशन प्राप्त करी, मैं उसका सुख ले रहा हूँ। आज मैंने बहुत मेहनत करके धन कमाया, मैं उसका सुख ले रहा हूँ। पर अगर मैं सोचूं कि ये मेरा है और ये कभी मेरे से छूट ही नहीं सकता, तो आप सुख ही नहीं ले पाएंगे, आप तो डर में रहेंगे
5: कि कल चला जाएगा तब मैं क्या करूँगा,
6: कोई छीन ना ले, कोई छूट ना जाए।
5: तो आज है तो उसको एंजॉय करो, और जब नहीं रहेगा तब टेंशन नहीं लेने का।
6: अगर सत्य को आप समझे तो यही है कि आज अगर कोई भी चीज, व्यक्ति है, वस्तु है, वैभव है, पोजीशन है, आप बताएं कौन सी अविनाशी है?
5: कुछ भी नहीं।
6: क्या अविनाशी? तो जो है वो है आपके संस्कार और आपकी कला। आज इसमें से कुछ चला भी जाएगा पर आपको पता है आपने हार्डवर्क से कमाया था, वापस हार्डवर्क से कमा सकते हैं, तो आप फियरलेस हो जाते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास होता है कि ये मैंने ही कमाया था, मैं वापस कमा सकता हूँ। पर आपने जो कमाया और आप उससे अटैच हो जाएं तो आप तो फियर में रहेंगे कि मेरे से ये चीज छूट ना जाए। हम इसे मेजोरिटी लोग जीवन फियर में बिताते हैं, और फियर का कारण ये है कि जो कुछ हम अक्वायर करते हैं हम उसको कस के पकड़ लेते हैं और हम सोचते हैं इसमें से कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
2: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
2: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
4: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
5: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
4: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
9: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
8: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
9: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
8: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
10: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Power to detach हमें fulfillment की तरफ कैसे ले जाती है? आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो पावर टू डिटैच एक तरह से फुलफिलमेंट की तरफ आगे आपको बढ़ाता है, आपको ये मानना है?
4: पावर टू डिटैच एक ऐसी एक स्थिति है, इसको हम कहेंगे जैसे एक स्थिति होती है ना, एक स्टेज है जिस स्टेज में आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज का इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता।
3: तो मैंने ये किया, अब इससे मेरी जिंदगी में क्या क्या होगा?
4: जैसे हमने कहा था कि मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, हार है, जीत है, सर्दी है, गर्मी, बीमारी भी है।
3: हाँ।
4: समझो आज आपको बीमारी भी हुई, तो आप अगर डिटैच्ड होते हैं तो आपको पता होता है बीमारी शरीर को ही है, मुझे नहीं हुई। आई एम सेपरेट फ्रॉम माई बॉडी। सो इफ यू आर डिटैच्ड, उसकी जो निशानी है, अंदर में हलचल नहीं है, अंदर में डिस्टर्बेंस नहीं है, एक अंदर में पीस है, दैट इज उसका साइन। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, या आपके रिश्ते नहीं है, या आप बहुत कोल्ड हो गए हैं, वो नहीं है, उसको डिटैचमेंट नहीं कहेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो लाइफ में दो चीजें ना अचानक से आ जाती है, अगला मंडे और पेरेंट्स के अनवांटेड सवाल। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स। व्हेदर यू ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, रशिंग टू कैच दैट ट्रेन, या फिर सिटिंग इन योर कार प्रिटेंडिंग यू रीच द ऑफिस व्हाइल एक्चुअली फिनिशिंग योर चाय। Yeah, I see you and I'm going to be with you without any judgment for next few hours. Lekin guess what, your morning just got a whole lot more interesting because Mirchi Mornings officially on ho chuka hai. Main hu Prisala tumhare saath, tumhari partner in crime, traffic and gossip. Lekin crime mat karna koi bhi, theek hai? Aaj we've got music, masti desi videsi vibes, duniya bhar ki khabrein, lot of Bollywood ka tadka and a lot of Mirchi dar bangers just for you only on Mirchi Mornings. And I've got a contest for you as well. Uske bare mein thodi si der mein bataunga, लेकिन अभी फिलहाल मिर्चीदार गाने चलाऊंगी तुम्हारे लिए। मुझे फॉलो कर लो जल्दी से इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रेस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। कॉल पंडित रामदेव फॉर ऑल योर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस ऑन लव, रिलेशनशिप्स, बिजनेस एंड करियर। कॉल 732-366-6777।
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
8: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
9: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
10: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
11: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
10: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
12: टैप टैप सेंड, टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
13: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: Business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
1: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
2: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
3: Is Diwali, jab apno ke sang roshni aur pyar ka mahol ho, to Red Label ke swad aur kadakpan se ghule har ek moment. Red Label ki har ek roshni wali chuski, dilon ke rishte aur celebration ko kar de aur bhi roshan. हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
4: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
5: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग पूरे 9 लाख की विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
6: अरे कहना क्या चाहते हो,
7: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
5: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: Okay, Mirchi Mornings par bas rahi hai sone ki chain. Kaise? Virani Jewelers presents Mirchi no laka har. Ye contest chal raha hai. Bahut sare contestant hai jo participate kar chuke hain aur abhi filhal hamare sath line par agli contestant maujood hai. Main hu Priscilla. And let's see, कौन है हमारे साथ. हेलो,
2: हाय प्रिसिला, कैसी है आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो?
2: एकदम मस्त. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग.
1: थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी. एंड कैन वी नो आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम प्रश्नी है.
1: प्रश्नी, व्हाट डज इट मीन?
2: प्रश्नी मीन्स फेरी.
1: फेरी, ओ माय गॉड, दैट्स ब्यूटीफुल.
2: थैंक यू सो मच.
1: एंड कह सकते हैं कि फेरी काफी कुछ माता रानी से मिलती जुलती है. नवरात्रि का त्योहार चल रहा है तो यू प्रीटी मच रिलेटेड टू दैट. ओके
2: जी, बिल्कुल. यस यस, एक तो नवरात्रि त्योहार ही ऐसा है जो एकदम फेमिनिज्म, गरबा, एंथुजियाज्म, पॉजिटिव एनर्जी, माता जी, ये सब का कलेक्टिव जो एटमोसफियर रहता है इस प्रेस्टिजियस फेस्टिवल में. दिस इज वाई दिस इज लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल.
1: एंड आपके लिए क्या सिग्निफिकेंस है नवरात्रि का?
2: मेरे लिए तो नवरात्रि का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि आई एम समवन हु वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द सिटी ऑफ गरबा, अहमदाबाद, गुजरात.
1: सो मैं तो
2: पैदा ही ऐसे गरबा के वो समय, प्लस मेरा बर्थडे भी सितंबर में ही आता है और तब नवरात्रि भी एग्जैक्टली एक वीक के बाद ही थी. तो फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि माता रानी की कृपा ही है जो मेरे को मेरे फेवरेट फेस्टिवल के टाइम पर और जहाँ जो सिटी और जो फैमिली जो नवरात्रि को इतना मानती है वहाँ पे मुझे बर्थ दिया. और

0: my favorite festival.
1: Oh, all right. So, Rashmi, अब मैं आपसे प्रश्न पूछने वाली हूँ.
0: ठीक है, ठीक है.
1: जो आपको अब उसका आंसर करना है. एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो आपने नवरात्रि के बारे में बताया. एंड आई होप आपका लक अभी बहुत काम करे. जल्दी से मुझे बताइए और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए. तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सॉन्ग है कॉल्ड कजरारे.
0: अच्छा,
1: ये कौन सी फिल्म का गाना है? जल्दी से बताइए.
0: बंटी और बबली.
1: बंटी और बबली इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस.
0: ये, थैंक यू.
1: तो नवरात्रि के इस शुभ अवसर में आप अगले राउंड में पहुंच गए हो. कांग्रेचुलेशंस.
0: थैंक यू सो मच.
1: एंड हैप्पी नवरात्रि टू यू.
0: Happy Navratri to you as well. Thank you so much, Priscilla, for connecting with me today.
2: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers. Rang Reza, Rang Reza.

0: चल रहा है?
1: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है।
0: ऑलराइट, कैसे जा रही नवरात्रि, मजा आ रहा है?
1: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है।
0: आई नो, फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग। लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी, अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लक का हार।
1: ओके,
0: ऑलराइट। सो सची, क्विकली मुझे ये जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना। मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
1: काजोल।
0: काजोल इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेचुलेशंस। ये सची।
1: या थैंक यू सो मच।
0: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो। हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की।
1: Yeah, thank you.
0: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Laga Haar.
1: Okay, thank you.
0: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ke abhi, and you could be the next participant in Mirchi No Laga Haar.
2: मिर्ची नौली, सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
9: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
10: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
11: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
10: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F-1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, बीच एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
15: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
16: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
15: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
17: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
18: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
19: Tera kya hoga, Kalya?
3: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
19: Ab mirchi kha.
5: Radio Mirchi. It's hot.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। Celebrate this Diwali with RajJewels.com.
3: Our business was getting ripped off before with high profit.

0: processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
1: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
2: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, NA, Concord, California.
3: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
4: Is Diwali, jab apno ke sang roshni aur pyar ka mahol ho, to Red Label ke swad aur kadakpan se ghule har ek moment. रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
5: मुझे नौलखा मंगा दे रे दीवाने।
6: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
7: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
6: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
10: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
11: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
10: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
11: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
10: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
13: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
14: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
15: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
14: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
15: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
12: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
16: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ, सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
16: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. Time for some weather ka hal cha. Lonely on Mirchi mornings with me, Priscilla. Aaj October 14th, temperatures are climbing from around 63 degrees Fahrenheit this morning to a high of 78 degrees Fahrenheit. Yani ki subah subah halka sa chilly weather rehne wala hai. Afternoon mein aate aate warmth aa jayegi aur weather jo hai full on mood swing dikha raha hai aaj ke din. Lekin lunch ke aaspaas umbrella ready rakhna, okay? Because around noon to 2 p.m. there is a 25 to 45% of chance of light rain or drizzle. Koi monsoon ब्लॉकबस्टर नहीं है लेकिन एक छोटा सा रेन का कैमियो है. टोटल रेनफॉल एक्सपेक्टेड इज अराउंड 1 millimeter ओनली. लेट आफ्टरनून तक स्काइज जो है दे शुड टर्न पार्टली सनी अगेन एंड इवनिंग में टेम्परेचर जो है इट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग. ओवरनाइट वी आर लुकिंग एट अराउंड 55 डिग्रीज फारेनहाइट, सो कीप दैट लाइट जैकेट हैंडी. ह्यूमिडिटी इज हाई, विंड्स आर कमिंग इन फ्रॉम द वेस्ट एट अराउंड 10 माइल्स पर आवर एंड द यूवी इंडेक्स इज लो एट 2 out of 10. सो आज क्या क्या कैरी करना है? सनग्लासेस, अ कॉम्पैक्ट अम्ब्रेला, some light jacket and साथ साथ में your water bottle to keep yourself hydrated. आज fashion काफी sorted है, prepared हो तुम तो आज जाओ and seize the day. और मिर्ची को अपने साथ चिपकाए रखो, एक contest भी चल रहा है मिर्ची पर, नो लक का हार presented by वीरानी jewelers. फटाफट से टाइप करो नवरात्रि और अपने पूरे नाम के साथ भेजो 9033647244 पर, क्योंकि नवरात्रि की हर रात को तुम जीत सकते हो एक गोल्ड चेन कर्सी वीरानी ज्वेलर्स, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. ओकट्री रोड पर है वीरानी ज्वेलर्स, चेक आउट veeraniejewelers.com. तुम नवरात्रि टाइप करके अपने पूरे नाम और फोन नंबर के साथ मुझे डीएम भी कर सकते हो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. अभी के लिए मिर्ची द बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. I hope Priscilla tumhare saath mein, and it's time for updates from around the world. सबसे पहले ग्रीस से जर्मनी जा रही एक फ्लाइट ने इमरजेंसी हाईजैकिंग कोड 7500 ट्रांसमिट किया। पायलट रेडियो पर रीचेबल नहीं था तो दो यूरोफाइटर जेट्स ने प्लेन को एस्कॉर्ट किया। थैंकफुली फ्लाइट सेफली लैंड हो गई। एयरलाइन ने बाद में रेडियो ग्लिच को ब्लेम किया है। नंबर टू पर सऊदी अरेबिया से एक मेजर लीगल डेवलपमेंट। श्रीलंकन हिंदू वर्कर अनोजन की ब्लास्फेमी केस में डेथ सेंटेंस को सऊदी अरेबिया की सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है। केस ऑनलाइन कमेंट्स से जुड़ा था और अब इस लीगल डेवलपमेंट पर सबकी नजर बनी हुई है। एंड लास्टली इंडिया के मेरठ से सौरभ राजपूत मर्डर केस में कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को डेथ सेंटेंस दिया है। सौरभ की 2025 में हत्या हुई थी और उनकी बॉडी को सीमेंट से भरे हुए ब्लू ड्रम में छुपाया गया था। इट्स अ डीपली डिस्टर्बिंग केस एंड अ रिमाइंडर of the devastating consequences of violent crimes. And that's your Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Sunte raho mujhe aur connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi.
1: Iscaba la puscaba la sacaba la burga, burga, burga. La virgo a la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या
2: है। इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
2: टाइम खराब कर रहे हैं,
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
2: पेशाब लूट रहे हो आप, बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेन करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेन कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ
3: ठीक है मैं निकलवा लूंगा।
2: ठीक है
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है, देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।

0: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
1: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
2: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK प्राइस।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
6: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
8: Inefficient,
9: very complex,
10: clumsy or
11: confusion ही confusion।
12: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right, you can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR, काम अनेक, software एक, Zoho One। Get your free trial at zoho.com/one।
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
14: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
15: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
16: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
17: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
17: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
19: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
20: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
21: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
20: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
21: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
20: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
22: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो Red Label के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक moment. Red Label की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
23: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
24: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
23: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. Mirchi no laka har. Presented by Virani Jewelers.
1: All right, Mirchi Mornings पर मैं मुरतब प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर Mirchi नो लक का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद द्वारसी.
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम Mirchi विल गेट इन टच विद यू.
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: Mirchi 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.

0: presented by Virani Jewelers.
1: Virani Jewelers presents Mirchi 9 Lakh Ka Haar, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन. इट्स डैम एक्साइटिंग. एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब. मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. लेट्स सी हु इज ऑनलाइन विद मी. हेलो.
2: Hi, Priscilla.
1: Hi, what's your name?
2: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
1: Hi, Preet. What's up?
2: Everything is good. How are you doing?
1: I'm great. So are you ready to play Mirchi 9 Lakh Ka Haar and azmao your luck?
2: Sure, why not?
1: Are you nervous?
2: No.
1: All right, that's great. Nervous होने की कोई बात ही नहीं है. मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर. All right, are you a movie buff?
2: Yes.
1: All right, so मुझे ये बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
2: Chole.
1: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
2: Thank you.
1: It was easy, right?
2: Yeah, it was very easy.
1: All right, so अब आप next round में चले गए हो. नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए.
2: थैंक यू. दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर.
1: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
2: नवरात्रि इज गुड. सो फार इज गुड. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल बट वी टेक पार्ट इन वी जॉइन फ्रेंड्स.
1: ग्रेट. आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स.
1: And thank you so much for participating.
0: Mirchi 9 Lakh Ka Haar, presented by Virani Jewelers.

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे। Only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
5: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
6: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
12: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
13: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
14: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
13: Wait, they can see us on Sunday?
14: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
15: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है? और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी

0: अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
1: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो Red Label के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक moment. रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी दे भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
5: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
6: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
5: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
6: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
9: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
11: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
12: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
11: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
13: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
2: Hello.
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब। मैं हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊं?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? कोई इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अरे तू है कौन, तू ये बता।
3: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई, तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स बेस्ट।
7: पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं। रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा

0: दुनिया को किस स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं, ये दिवाली नानक वाली। सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
2: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
8: I am not going to bed with you ever again.
7: But why? What did I do?
8: That bed is horrible. It's outdated, and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
7: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
8: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
7: Yes, yes. Yes, come soon. Honey!
8: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
11: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
12: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
13: अरे कहना क्या चाहते हो?
14: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
12: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग मिर्ची में चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लख का हार जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन. लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है. हेलो
2: हेलो हाय
1: हाय व्हाट्स योर नेम.
2: हाय माय नेम इज दीप्ति.
1: हाय दीप्ति हाउ आर यू डूइंग टुडे.
2: I'm doing great. How are you?
1: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
2: Happy Navratri to you too.
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: Good, good. It's going great.
1: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ.
1: अरे वाह लखनऊ से हैं. तो let me ask you my next question quickly.
2: Yeah, yeah.
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना ठीक है. Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
2: It's tiger.
1: That's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented.

0: लक्ष्मी का घर पर वास हो। इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
1: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
2: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
3: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
4: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price bar jaye, gold bars kharide wholesale price pe. Only at RK Jewels. RK Jewels. Best quality, best price.
5: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charge 5th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
7: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
8: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
9: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.

0: थ्री नाइट्स, नाइन गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं वन प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर नाइन रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
1: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com। Nine Nights, One Divine Spirit.
2: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
1: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
2: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
1: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Tera kya hoga, Kalya?
9: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में और आज राशि जोन 1 एंड 2 एक ही साथ.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: एरीज यानी मेष राशि, आज प्लान चेंज होगा लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तुम्हारे फेवर में भी जा सकता है. बस शॉपिंग कार्ट को अपना थेरेपिस्ट मत बनाना. लकी कलर कोरल, लकी नंबर 9. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, मनी मैटर्स में कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं. नेगोशिएशन में कूल रहना और बजट को इमोशनल डैमेज मत बना देना. लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 24. जेमिनी यानी मिथुन राशि, बोर्डम से बचने के लिए किसी इंटरेस्टिंग पर्सन से बात हो सकती है. वर्क पे गॉसिप से ज्यादा फैक्ट्स पर फोकस करो. लकी कलर लैवेंडर, लकी नंबर 11. कैंसर यानी कर्क राशि, आज रूटीन का बैंड बज सकता है और किसी और की प्रॉब्लम तुम्हारी टू डू लिस्ट में आ सकती है. हेल्पिंग नेचर अच्छा है लेकिन 24 आवर कस्टमर सर्विस नहीं बनना. लकी कलर इज पर्ल वाइट, लकी नंबर इज 6. लियो यानी कि सिंह राशि, फ्रेंड्स या सोशल प्लान्स में सरप्राइज मिल सकता है. एनर्जी हाई है सो से यस टू सम फन. बस हर प्लान को खुद से स्पॉन्सर मत करना. लकी कलर इज गोल्ड, लकी नंबर इज 19. वर्गो यानी कन्या राशि, होम या वर्क पे इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ सकती है. टू डू लिस्ट छोटी करो, बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो. हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम नहीं हो. लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 4. लीब्रा यानी तुला राशि, आज कोई फ्रेश आइडिया तुम्हारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है. सिर्फ लॉजिक नहीं बल्कि गट फीलिंग को भी सुनो और टीम वर्क करो. लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 14. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मनी या शेयर्ड रिसोर्सेज में सरप्राइज आ सकता है लेकिन फाइनेंशियल डिस्कशंस और क्रिएटिविटी तुम्हारे फेवर में जा सकती है. लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज कॉन्फिडेंस हाई है और चेंज का मूड स्ट्रांग हो सकता है. न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए डोर ओपन रखो. लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 27. कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन तुम्हारा स्केड्यूल हिला सकता है. टेक अ ब्रेथ, एक्सेप्ट सपोर्ट और सेल्फ केयर को पोस्टपोन मत करो. तुम मशीन नहीं हो इवन इफ योर कैलेंडर things otherwise. Lucky color is charcoal gray, lucky number is 10. Aquarius yani kumbh rashi, midweek energy, financial progress or steady growth ko support kar sakti hai. Smart moves karo, patience rakho, overnight success sirf reels mein hi milta hai. Lucky color electric blue, lucky number 22. Pisces yani mean rashi, work mein progress improve ho sakti hai aur kisi close person ki help bhi karoge. Bas communication clear rakhna kyunki mind reading abhi tak kisi app mein launch nahi hui hai. Lucky color is sea green, lucky number is 3. And that wraps up Rashi Zone 1 and 2. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वी

0: वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
9: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
10: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
11: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
12: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
13: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
12: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
13: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
16: मुझे नौलखा तेरे ओ सैया दीवाने।
17: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
18: अरे कहना क्या चाहते हो?
19: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
17: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
20: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
21: Listener MI, back to back gana sunega.
22: Back to back gana sunega.
21: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And before you rush into your next meeting, grocery run या फिर another episode of What Should I Cook Today, ये याद रखो, life में surprises full on होने चाहिए. And guess what? हो सकता है surprise surprise में अगले lucky winner तुम बन रहे हो. किसके? Mirchi 9 लाख का हार presented by Virani Jewelers, जिसमें हर रात ऑफ नवरात्रि तुमको मिल रही है एक गोल्ड की चेन. जीतने के लिए क्या करना है? सबसे पहले व्हाट्सएप खोलना है, नवरात्रि टाइप करना है और अपने पूरे नाम के साथ भेजना है 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244. या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. डीएम करो नवरात्रि, अपना पूरा नाम और अपना फोन नंबर एंड ईमेल लिखकर मुझे भेज दो इंस्टाग्राम पर. एंड देन वेट फॉर माय call, I will play a contest with you and you could be the next lucky winner of Mirchi 9 lakh ka haar. So jaldi jaldi apna naam register karo aur sunte raho Mirchi. Abhi ke liye tata bye bye from Priscilla. Milungi kal tumhe same time same place par. Tab tak ke liye tata bye bye, you stay hot and stay tuned.

0: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और करण जौहर के अल्टीमेट काउच पे एकदम मस्त वाली कॉफी पीते हुए जो सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम। 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है। 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा। वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th ऑफ अक्टूबर से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये इस तरह।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहे हैं।
3: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा पेशाब लूट रहे हो आप।
2: बात क्या हो गई तो भाई, अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: नहीं तो मेरा यूरिन
2: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है
3: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट में आई क्या? देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
9: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स, दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस। नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग।
8: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
9: वी आर ओपन 7 days अ वीक इंक्लूडिंग संडे। द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स, ऑफरिंग सेम डे सिक केयर। वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
12: Kya har hafte grocery bill dekhke paseena chhoot raha hai? गैस प्राइसेस की वजह से ट्रैवल ही बंद कर दिया है। अरे ईरान के साथ हम क्यों लड़ रहे हैं भाई? कनाडा कब से हमारा दुश्मन हो गया? ट्रंप और रिपब्लिकन कांग्रेस को तो आम आदमी की चिंता है ही नहीं, बस अपने अमीर दोस्तों को टैक्स कट पे टैक्स कट दिए जा रहे हैं, और हर दिन वीजा, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप को लेके कुछ नया रूल। इस नवंबर सारे डेमोक्रेट्स को वोट दें ताकि अगले 2 साल पिछले 2 साल की तरह ना निकले। वोट जरूर करें।
13: पेड फॉर बाय देसी ब्लू, deciblue.org, नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी कैंडिडेट और कैंडिडेट्स कमिटी।
14: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 years of experience, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसन, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यूर विद राज ऑटो सेंटर, यूर इन गुड हैंड्स।

0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूं, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहां अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: by Virani Jewelers.
1: All right, मिर्ची मॉर्निंग्स पर मैं अमृत प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लग का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्ट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें एक character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद द्वारसी.
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है. सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर. ओके,
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंट दिवाली.
3: आपके पास हो दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट RK ज्वेल्स. RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
6: नवरात एक स्पिरिट
7: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
6: रमो गरबा डेली 11-19 October सांजे 7 PM थी.
7: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ 19 9 यज्ञ 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी. विजिट gayatricenter.org टुडे.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
11: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
10: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
11: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
12: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार.
14: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है रजत जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
3: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और अच्छा।
0: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
3: जावेद जाफरी।
0: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल।
0: क्या बात, धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: मानव का भाई अरशद वारसी।
0: क्या बात, अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का ये बोलते हैं?
3: मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: गाना याद किया था ना?
3: वही पहले वही आता है।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल की।
0: ओके, पता है कल्कि की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
3: बैग का नाम बैगवती होता है। मूवी याद नहीं
0: आ रही। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले
1: मिर्ची फिल्म ची।
3: थैंक यू श्रुति।
0: तो भाई अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल कि मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे जाके आपको अपना नंबर भेजना होगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतुराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।

0: घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
3: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
6: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
7: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
8: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
10: Yeah, meethi mirchi, brighten up your day, we will find a way on meethi mirchi, aha।
11: खेलो मगर प्यार से।
12: श्रुति श्रुति
13: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
14: मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ, जहाँ आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है और फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमने रजत जी से शुरू किया था, बट ही गॉट स्टक एट पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है राहुल। तैयार है आप?
15: जी।
14: ओके, सो रजत इस सवाल पे अटके थे कि कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है।
15: ZNMD
14: में पिंक फोन कौन चलाता है?
15: ऋतिक रोशन।
14: लड्डू रायचंद किस फिल्म में बने हैं?
15: कभी खुशी कभी गम।
14: काफी म्यूजिकल हैं आप। कभी खुशी कभी गम में कह दिया बस कह दिया कौन बोलता है?
15: अमिताभ जी।
14: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सड़ू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
15: मोहब्बतें
14: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
15: ऐश्वर्या राय।
14: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो हॉट शायरा बनी है?
15: ए दिल है मुश्किल
14: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
15: रणबीर कपूर
14: किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
15: कौन से बने हैं?
14: पापा पगलू।
15: एनिमल
14: में अबरार कौन है?
15: बॉबी देओल।
14: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
15: अजनबी।
14: क्या बात, अजनबी में बॉबी की वाइफ कौन है?
15: करीना कपूर
14: की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
15: रावण।
14: हाँ जी, रावण में गेम डिजाइनर कौन है?
15: शाहरुख खान।
14: कैदी नंबर 786 किस फिल्म में बने हैं?
15: वीर जारा
14: में उनकी डिफेंस लॉयर कौन है?
15: रानी मुखर्जी
14: की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
15: तारा रम्पम।
14: आपने भी गेम एकदम तारा रम्पम खेला है। तो चलिए आपको भी डिक्लेयर करते हैं हमारे आज के दूसरे
12: मिर्ची फिल्म ची।
14: बाकी अगर आप में से कोई इस गेम का हिस्सा बनना चाहता है तो मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम करना मत भूलना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
16: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी। रेडियो मिर्ची।

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: श्रुति। मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जहां विमेन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई फिल्म पीकू से पीकू के किरदार के बारे में। नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में। नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपिका पादुकोण एज पीकू ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती है। वेल ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी बट इन अ वाइल। अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति। इट्स ऑल।

0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में, अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला है जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hello.
1: Hi.
0: Hi, what's up?
1: Yeah, I'm doing good. How are you?
0: I'm great.
1: Oh, my name is Sachi.
0: Hi, Sachi. क्या चल रहा है?
1: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है.
0: All right. कैसे जा रही नवरात्रि? मजा आ रहा है?
1: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है.
0: Oh, I know. फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग.
1: या
0: लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची नो लक का हार. ऑलराइट, सो सची क्विकली मुझे ये जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
1: काजोल.
0: काजोल इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. ये सची.
1: या थैंक यू सो मच.
0: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
1: Yeah, thank you.
0: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi No Laga Haar.
1: Okay, thank you.
0: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likhkar apne pure naam ke sath bhejo abhi ke abhi. And you could be the next participant in Mirchi No Laga Haar.
2: Mirchi No Laga Haar, presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: इनफिशियंट, वेरी कॉम्प्लेक्स,
5: क्लमजी और
6: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन.
7: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ. अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at Zoho.com/one.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे. ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: इट्स 2 AM. हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड अ पीडियाट्रिशियंस ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे. व्हाट डू वी डू?
10: डोंट वरी, आई एम कॉन्टेक्टिंग 7 days पीडियाट्रिक्स. दे विल आंसर द कॉल एंड गाइड अस. नाउ वी विल बी एबल टू सी देम इन द मॉर्निंग.
9: वेट, दे कैन सी अस ऑन संडे?
10: वी आर ओपन 7 days a week इंक्लूडिंग संडे. द ऑफिस इज ओपन इन द इवनिंग्स एंड ऑन वीकेंड्स ऑफरिंग सेम डे सिक केयर. वी हैव बीन सर्विसिंग एडिसन एंड सराउंडिंग areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Oh no!
14: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
15: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
17: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
15: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज. हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
11: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को। अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स है उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है। जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। And now, last but definitely not the least, number 5 पे let's talk about Mrs. ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने ऋचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
8: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
9: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
13: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9th ऑफ सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हां जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूं, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहां अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड

0: किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्ति शालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पर हेलो हेलो, मैं हूँ श्रेया और आज ना पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गानों के साथ बात होगी बेगम मुमताज जहान दहलवी की। क्या कह रहे हो, नहीं पहचाने? अरे बिल्कुल जानते हो भाई। चलो एक हिंट देती हूँ कि जब भी कोई बला का खूबसूरत लगता है ना तो उसको कॉम्प्लीमेंट में कहा जाता है। क्या बात है, आज तो बिल्कुल मधुबाला लग रही हो। सो यस, आज होगी मधुबाला जी की बातें। शुरुआत करेंगे एक ऐसे काम से जो मधुबाला जी को बहुत पसंद था। जैसे ही शूटिंग खत्म होती थी ना, वो ये काम जरूर करती थी और वो करने से ना उन्हें फ्रीडम महसूस होता था, आजादी लगती थी। क्या था वो काम? अब आपको तो मेरी आदत इतने दिनों से पता ही चल गई, सब कुछ एक बार में नहीं बताती हूँ। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो।
3: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
2: हेलो
3: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूँ जिन्होंने बताया आपके बारे में। एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
2: मैं
3: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
2: तुम कौन हो?
3: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
2: क्यों आ जाऊँ?
3: अग्रेशन क्यों आ जाऊँ? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास?
2: तुम्हें बात करनी है?
3: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
2: क्यों? मैं तुम्हारे पास कौन हूँ तुम?
3: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
2: अरे किसका अंकल?
3: बेटा तुम्हारा अंकल।
2: ये कब आ गया?
3: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा है ये कब आ गया। फोन काट दिया।
2: हेलो
3: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
2: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
3: वही लेवल 7।
2: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
3: अग्रेशन।
2: कौन हो तुम मेरे?
3: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
2: अबे तू है कौन? तू ये बता
3: ना इसे। ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
2: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
3: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
2: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
3: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26+ DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम। साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057। नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज। हर दिन जीत सकते हैं 1 precious gold chain। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244। दैट्स 9033 मिर्ची। और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22-carat gold एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
9: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
10: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
11: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, वेद इस जमाने की श्रेया। पुरानी जीन्स पे ना आज बात हो रही है मधुबाला जी की। तो मैं बता रही थी कि कैसे उनको एक चीज बेहद पसंद थी, इनफैक्ट वही एक चीज उनको अलाउड भी थी। शूटिंग जब खत्म हो जाती थी तो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। मधुबाला जी को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि उन्हें सीधे सेट से घर और घर से सेट जाना है। ऐसे में वो अपना फ्रीडम, अपनी आजादी पता है किस में ढूंढती थी? ड्राइविंग में। उन्हें ड्राइविंग करना बेहद पसंद था, तो हमेशा ड्राइवर को पीछे बैठाती थी और घर का एक लंबा रास्ता लेते हुए वापस जाती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें उनके गानों के साथ, तो बस कहीं भी मत जाना। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाका हार चल रहा है मिर्ची पर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में और मेरे साथ में कौन है? हेलो
2: Hi, Prasad. Good morning. This is Parth.
1: Hi, Parth. Good morning. Happy Navratri.
2: You too.
1: So, what's happening? Navratri mein kya chal raha hai?
2: Nothing much. Just driving to work. you know. I wish I was back in India right now because I'm from Vadodara, and I don't know if you know, but that's like a big celebration there of Navratri.
1: Vadodara.
2: Yes.
1: All right. Game show.
2: Majama.
1: All right, मुझे इतना ही गुजराती आता है, but I'm going to ask you the question to for you to enter the next round. Okay, are you ready?
2: Yes.
1: All right. So, are you a 90s kid?
2: Yes.
1: Okay. So this one would be easy for you. Tell me who played the famous villain Mogambo in Mr. India. Quickly.
2: That was Amrish Puri.
1: Amrish Puri is the correct answer. Thank you so much, Parth, for participating. Congratulations.
2: Thank you.
1: You've moved to the next round and someone from Mirchi will contact you soon. Thank you so much for participating. And
2: all right.
1: Just keep an eye on your phone number. Someone will get in touch with you. Okay?
2: Okay. Sounds all right, good. Thank you for playing so much nice songs and, you know, for your show.
1: Oh, my pleasure. Thank you so much.
0: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: Oh no!
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
0: Here's something you won't want to miss, a beat of our own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community, and a story about finding common ground when it matters most. Catch a beat of our own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
6: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Paas khari होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल

0: शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो,
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
3: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
5: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
6: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
7: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
0: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस योर एंटायर बिजनेस Zoho One इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
0: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
13: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ये मधुबाला नाम की किताब कैसे खुली? मेरा मतलब है कि मधुबाला जी की जर्नी कैसे शुरू हुई, अभी बताती हूँ। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया। उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी काम करते थे पाकिस्तान में। पेशावर में एक कंपनी थी जिसका नाम था इम्पीरियल टोबैको कंपनी। वहाँ से एक दिन उनकी नौकरी छूट गई, वो अपने पूरे परिवार को लेकर के दिल्ली आ गए। उसके बाद काम ढूंढते ढूंढते मुंबई आए। मुंबई में जब वो काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि बॉलीवुड में, यानी तब तो ये इंडियन सिनेमा कहलाया जाता था, वहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अताउल्ला खान जी को ये तो पता था कि उनकी बेबी मुमताज यानी मधुबाला बेहद खूबसूरत है, तो बस वो उनको लेकर के अगले दिन पहुंच गए स्टूडियोज, और वहां पे बेबी मुमताज ने की अपनी पहली मूवी एज चाइल्ड आर्टिस्ट। इस मूवी का नाम था बसंत, वे बैक 1942 में। उसके बाद मधुबाला जी ने कई सारी फिल्मों में काम किया, फुलवारी, पुजारी, राजपुतानी, बहुत सारी। बस यहीं से उनकी जिंदगी में भी ट्विस्ट एंड टर्न भी शुरू हो गए। अभी इनके बारे में बताऊंगी, गानों के उस पार मिलते हैं ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
2: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RawJewels.com।
4: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RawJewels.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6666.

0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
7: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिससे मधुबाला जी ने अपने करियर की शुरुआत करी एज लीड एक्ट्रेस? बताओ बताओ। पुरानी जीन्स पर, हाय मैं हूँ श्रेया। यू नो व्हाट, सिर्फ 14 साल की थी वो जब लीड एक्ट्रेस बन गई थी। 14 बोले तो मतलब अगर आप स्कूल में हो तो 8th या 9th क्लास में होगे। और उनके ऑपोजिट एक ऐसे एक्टर थे जो इंडस्ट्री में थी तो बहुत टाइम से, लेकिन एक बड़ी फिल्म की तरह उनकी भी ये पहली फिल्म थी। एंड इट वॉज नन अदर देन राज कपूर साहब। मूवी का नाम था नील कमल, जिसमें दोनों अपने बड़े बड़े सपने लेकर के मैदान में उतरे थे। अभी तो उस जमाने के और भी बहुत सारे किस्से बाकी हैं, तो जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: ट्रक आ रहा,
1: झूठ मत बोल,
0: आ नहीं जा रहा,
2: देखो आँख मारे लाल लाल सिग्नल।

0: हल्ला मचाएंगे हल्ला मचाएंगे बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
2: जब भी कोई बहुत खूबसूरत होता है तो कहते हैं ना, आहा क्या मधुबाला लग रही हो। तो आज बस मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस। हाँ, तो मैं बता रही थी कि एज अ लीड लेडी उनको उनका पहला ब्रेक मिला राज कपूर के ऑपोजिट। ये फिल्म थी बहुत पुरानी, 1947 की, नीलकमल। ये बनाने वाले थे केदार शर्मा साहब। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है कि राज कपूर के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की हैं। NM केलकर की एक फिल्म आई थी अमर प्रेम, ना ना ना राजेश खन्ना वाली नहीं, बल्कि इसमें थे राज कपूर अगेन पेड अप विद मधुबाला जी। एक फिल्म आई थी मोहन सिन्हा की जिसका नाम था दिल की रानी, इसमें भी राज साहब और मधुबाला जी थे। एक्चुअली में राज कपूर और मधुबाला जी की जो केमिस्ट्री थी इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज काफी पुरानी बात है, 1940s और 50s की। आज मैं पता करके आई थी तो आपके साथ शेयर कर ली। आगे कौन कौन से किस्से हैं सब बताऊंगी, वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
3: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
4: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
3: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
4: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
3: इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह।
4: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
3: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
4: चलो
3: मतलब
4: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
3: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आप सुनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
4: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
3: टाइम खराब कर रहे हैं,
4: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
3: हिसाब लूट रहे हो आप, क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
4: है तो मेरा यूरिन
3: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
4: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
3: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
4: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
3: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
4: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
3: मैं नहीं दे रहा, तुझे जहाँ कंप्लेंट करनी है
4: मैं निकलवा लूंगा,
3: ठीक है?
4: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
3: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
4: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
3: हाँ ठीक है, देख ले
4: भाई।
3: हाँ ठीक है।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं, पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: हम देसी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम मेहनत करते हैं, टैक्सेस भरते हैं, नए आइडियाज लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है और हमारी कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इसको बदलने का सिर्फ एक तरीका है, वोटिंग। अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इस नवंबर जरूर वोट करें।
4: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
8: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: I want to live the story of Madhubala.
1: ये लिखने वाले थे कातिजिया अकबर.
0: पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया और आज मधुबाला जी की बातें बैक टू बैक चल रही हैं. सो मैं बता रही थी कि ये जो बुक थी ये मधुबाला की बायोग्राफी थी जो अकबर साहब ने लिखी थी. उसमें ना उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मेंशन की है. ही सेड कि मधुबाला इतनी खूबसूरत थी, इतनी वाइट थी, उनकी स्किन ऐसे आर पार दिखती थी, एकदम ट्रांसलूसेंट थी, कि जब भी वो पान खाती थी, एंड बाय द वे पान खाने की काफी शौकीन थी, तो उनके थ्रोट से, उनके गले से उतरता हुआ पान तक दिखता था. मतलब ये बोलते हुए भी ना मेरे गूज बम्स आ रहे हैं. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश हमने मधुबाला जी को देखा होता. अच्छा, आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई जरूर उनका जबरदस्त फैन होगा, जैसे मेरी फैमिली में मेरे पापा. और आप क्या, कौन है बताना मुझे. फेसबुक और इंस्टा पे मिल सकते हो आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHREYA विद लव. ये है मेरा हैंडल. अभी और भी बातें बाकी, सो वापस आऊं.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची नौ लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: मेरा नाम है प्रिसला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग। मिर्ची पे चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है? हेलो
2: हेलो हाय
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: हाय, माय नेम इज दीप्ति।
1: हाय दीप्ति, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
2: आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ आर यू?
1: ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। हैप्पी नवरात्रि टू यू।
2: हैप्पी नवरात्रि टू यू टू।
1: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
2: गुड गुड, इट्स गोइंग ग्रेट।
1: ऑलराइट, कहां से हो आप इंडिया में से?
2: मैं यूपी लखनऊ।
1: अरे वाह, लखनऊ से हैं। तो लेट मी आस्क यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली।
2: या या,
1: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? विद इन सेकंड्स यू हैव टू आंसर कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल एनिमल?
2: इट्स टाइगर।
1: इट्स टाइगर, दैट्स करेक्ट। And I'll give you that Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
2: Thank you.
1: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
0: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। Celebrate this Diwali with RajJewels.com. नवरात एकज स्पिरिट
4: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
3: रमो गरबा डेली 11-19 ऑक्टोबर सांजे 7 कलाक थी।
4: तारीख 18मी ना रोज 8म यज्ञ, 19मी ए 9म यज्ञ अने 25मी ए शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट gayatricenter.org टुडे।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
8: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
9: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
10: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
11: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
10: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
7: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
12: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
7: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
13: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
7: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी।

दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मधुबाला जी सेट पे हमेशा पंक्चुअल। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। जितने भी लोगों ने मधुबाला जी के साथ काम किया है और कभी उनके बारे में लिखा है तो उनकी पंक्चुअलिटी के बारे में जरूर लिखा है। उनकी लार्ज फैमिली को पैसे का सपोर्ट देने वाली इकलौती मधुबाला जी थी और कहते हैं कि वो मशीन की तरह काम करती थी, अपना ख्याल कम रखती थी, खाना मिस करती थी और मेट्रो के ओवरक्राउडेड कंपार्टमेंट में मलाट से दादर, दादर से मलाट करती रहती थी, पर कभी भी सेट पे एब्सेंट या लेट नहीं होती थी। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें बैक टू बैक चलेंगी ना श्रेया के साथ, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
1: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
7: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
8: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट viranijewelers.com।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दोस्त बनाना अलाउड नहीं था, पार्टीज जाना अलाउड नहीं था, फिल्मों के प्रीमियर अटेंड करना अलाउड नहीं था, फिल्म फेस्टिवल्स जाना अलाउड नहीं था, पिकनिक्स, गेट टुगेदर्स, कहीं पर भी मधुबाला जी नहीं जा सकती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज उन्हीं की बातें चल रही हैं। सो उनके अब्बा यानी अताउल्ला खान जी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। अगर मधुबाला जी को कुछ अलाउड था तो वो था सेट से घर और घर से सेट। इनफैक्ट वो अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर पे नहीं जा सकती थी। कुछ किताबों ने तो ये भी लिखा है कि इन्हीं चीजों से वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर्ट थी, और क्योंकि वो अपने अब्बा के खिलाफ नहीं जा पाती थी, वो बहुत ही मायूस और सेट पे चुप चुप रहने लगी थी। एक बार तो उन्होंने खुद कहा कि खूबसूरत होना खुशी देता है, लेकिन असली खुशी मिल जाए ये बहुत कम लोगों के साथ होता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, वापस आओ और भी बातें करेंगे उनकी।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्च.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
2: Hello, hello, Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai hafte ke hottest pop gaano ki. Hello and welcome. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s and 2000s ka indie pop classic hum feature karne wale hain. All this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with gaana number 10. 18 haftos ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार. संजू राठौड़ की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: इतनी कॉम्प्लेक्स बात इतने प्यार से बोल जाते हैं, हमारा ठोकरों से खास नाता है। गाने का नाम है तारे, फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। मैं और आप अपने ओल्ड वेज में स्टक रहते हैं, देन वी हैव गॉट स्टॉलवर्ट्स लाइक श्रेया घोषाल हु कीप्स फाइंडिंग न्यूअर वर्जन्स ऑफ हरसेल्फ। उनका नाम सुनते ही उनकी आवाज हमारे दिमाग में आ जाती है। सच एन आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर ऑफ आवर टाइम्स। बट इफ आई हैव टू पिक अ श्रेया घोषाल सॉन्ग फ्रॉम रीसेंट टाइम्स जो मेरा फेवरेट है, दैट्स दिस कोलैबोरेशन शी डिड विद एफी टिल्लो। Cool song for Shreya to do, contemporary Punjabi pop gana, and it's one of many collaborations जो Shreya Ghoshal कर रहे हैं। She also did a Coke Studio Bharat song. I love how curious she is still about her art. And just when we know कि मैंने Shreya Ghoshal को हर तरीके के गाने में सुन लिया, she will surprise us with something. That's the reason she is such a global pop icon. For all her fans, for all the budding artists, Cat's Eye Band की Lara Raj ने recently Los Angeles में Shreya के साथ एक panel किया था, and she had a proper fangirl moment with Shreya Ghoshal. She called her the Bollywood queen. But to me, Shreya Ghoshal is just a queen. Chahe wo playback ho ya fir global pop. A countdown ka jo agle wala gana hai, it's an independent pop song by Shreya Ghoshal. Nayi naveli entry hui hai. Shreya ki awaaz mein Anurag Mishra ki composition, Alok Ranjan and Anurag Mishra ki lyrics. Gaane ka naam hai Berry Pia. How poetic is that? It's playing right next for you on Gaana number 8. You're listening to Gaana Indie Top 10. Vandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
1: Number 8.

0: टी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
2: सर?
3: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
2: टाइम कितना है
3: सर? डेढ़ से दो मिनट।
2: पीछे हो गया
3: फिर कटेगा कैसे?
2: अगर भारी सामान
3: तो नहीं है सर।
2: रंग बता।
3: एक लाल एक हरा।
2: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
3: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली। लेकिन सिचुएशन है।
2: आसपास कोई भी नहीं है।
3: आसपास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है।
2: हिल नहीं रहे। एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
2: फटना नहीं चाहिए। आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
3: ठीक है।
2: हरा काट के देख धीरे से।
3: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
2: ताली बज रही है? कौन है?
3: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना। मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
2: शोरूम का रिबन काट रहा
3: है।
2: हाँ।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
6: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
5: Wait, they can see us on Sunday?
6: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
7: Nine Nights, One Divine Spirit.
8: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscat Way.
7: Join daily Garva, October 11th to 19th at 7 p.m.
8: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th and Sharad Purnima Garba on the 25th.
7: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
9: Here's something you won't want to miss, a beat of our own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community, and a story about finding common ground when it matters most. Catch a beat of our own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit MacArthur.org.
10: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
11: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलिशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
12: October 24th and 25th, Hammerhold Upper Elementary School, East Brunswick, New Jersey. Register today at maitriusa.org.
13: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
14: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
13: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
14: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: बंजारी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है बैरन। 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। हर साल अक्टूबर आता है तो ये फीलिंग आती है ये 10 महीने कहाँ निकल गए। रिसेंटली मैंने एक गाना सुना एंड आई रियलाइज कि 10 साल कहाँ निकल गए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. This show is all about the hottest pop music of the week. But recently ek gaane ne mujhe ekdam surprise kar diya when I realized ki is gaane ko, listen to this song, isko 10 saal ho gaye hain. Mere yaar mera pyar hai jahan hai ye nikke nikke shots. गाने का नाम है बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह 10 साल। यस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ इस गाने पर डांस कर रही थी एंड व्हेन आई रियलाइज कि हाँ इसको 10 साल हो गए, आई वाज लाइक नहीं पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज ट्रू। 10 साल पहले अर्जुन कानूंगो अपने करियर में जो स्टार्ट कर रहे थे एंड टू गेट अ बादशाह कोलैब वाज सच अ ग्रेट डील फॉर हिम एंड इसकी स्टोरी भी बहुत फनी है। बाय 2016 बादशाह वाज बादशाह, ठीक है, एकदम रिकॉग्नाइज्ड रैपर, बट अर्जुन वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट तो ही वांटेड बादशाह टू कोलैबोरेट ऑन दिस सॉन्ग। अर्जुन ने ऐसे ही चांस लिया, बादशाह को ईमेल लिखा दैट मैं ये गाना कर रहा हूँ, आई वुड लव फॉर यू टू रैप ऑन इट। एक दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, दो दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तीसरे दिन सीधा अटैचमेंट में एक रैप आता है। बादशाह ने ना कोई मीटिंग करी ना कोई स्टूडियो सेशन, उस अटैचमेंट में जो रैप का पार्ट था वही आज इस गाने में है। ये दोनों पहली बार मिले भी इस गाने के वीडियो शूट पर थे एंड ऑलमोस्ट 10 years लेटर दिस सॉन्ग इज स्टिल अ टॉप पार्टी प्लेलिस्ट फेवरेट। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। Throwback to 2016. This is Baki Baate Peene Baad by Arjun Kanungo and Bacha only on Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

हर थोड़े वक्त के बाद में यही बोलती रहती हूँ कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल ऑफ दैट. दैट वाज अर्जुन गानों को बादशाह का गाना, बाकी बातें पीने बाद.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची नौ लाका हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लाख का हार, जिसमें हर नवरात्रि की रात को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमारे लिसनर्स को जीतने की गोल्ड की चेन। इट्स डैम एक्साइटिंग। एंड अभी मेरे साथ अगले कंटेस्टेंट लाइन पर हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ये सब। मैं हूँ प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। लेट्स सी हु इज ऑन लाइन विद मी। हेलो।
2: Hi, Priscilla.
1: Hi, what's your name?
2: My name is Prabhupreet. You can call me Preet.
1: Hi, Preet. What's up?
2: Everything is good. How are you doing?
1: I'm great. So are you ready to play Mirchi No Luck Ka Haar and Aazmao Your Luck?
2: Sure, why not?
1: Are you nervous?
2: No.
1: All right, that's great. Nervous होने की कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत ही जल्दी एक सवाल पूछने वाली हूँ एंड अब उसका जवाब आपको देना है बहुत ध्यान से सुनकर। All right, are you a movie buff?
2: Yes.
1: All right, so मुझे बताओ कि which feature film has the dialogue कितने आदमी थे?
2: Chole.
1: Chole is the correct answer. Congratulations, Preet.
2: Thank you.
1: It was easy, right?
2: Yeah, it was very easy.
1: All right, so अब आप next round में चले गए हो। नवरात्रि का सेकेंड डे बहुत शुभ है आपके लिए।
2: थैंक यू, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर।
1: या कैसे जा रहे हैं नवरात्रि?
2: नवरात्रि इज गुड, सो फार इज गुड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज़ दे हैव कॉल्ड अस फॉर व्हाट यू कॉल द पूजा एंड ऑल, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड।
1: ओके, ऑलराइट,
2: वी डोंट सेलिब्रेट बट या वी टेक पार्ट इन, वी जॉइन फ्रेंड्स।
1: ग्रेट ग्रेट। आई होप आपकी नवरात्रि बहुत ही शुभ हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग।
0: मिर्ची नौ लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
0: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
4: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीजिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी और मेनी मोर विद हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपीरियंस।
0: एम्स एजुकेशन इज नाउ वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड ऑफरिंग I-20 टू एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परस्यूइंग एन F1 स्टूडेंट वीजा। विजिट aimseducation.edu। योर हेल्थ केयर फ्यूचर स्टार्ट्स विद एम्स।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: दिस फेस्टिव सीजन सोना ज्वेलर्स प्रेजेंट्स ग्रैंड गिवअवे 2026। जॉइन आवर बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर। कम टू सोना ज्वेलर्स बिटवीन सितंबर 12th एंड डिसेंबर 31st 2026 एंड एंटर फॉर योर चांस टू विन अ BMW, अ $2,500 गिफ्ट कार्ड और अ $1,000 गिफ्ट कार्ड। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? विजिट सोना ज्वेलर्स इन इसलन, न्यू जर्सी today.

0: घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
3: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
10: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
11: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: കൊണ്ടു മുറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കരളിൽ പ്രിയങ്കൊട്ട് നിറഞ്ഞാൽ അറിയാം.
1: Craziest collab of 2026, Shreya Ghoshal ka gana, Arjun KDS 54, Ron ka gana featuring Shreya Ghoshal, that is Kalyani, this week on Gana Number 4.
2: Gana Indie Top 10.
3: Gana Indie Top 10.
4: Kanika ka saath. On Mirchi.
1: Mirchi par, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao, mera handle is at RJ Kanika. It's time for what we call... हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग यू फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
5: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो.
1: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है परी हूँ मैं. 1991 में रिलीज हुआ था. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस का म्यूजिक, राजेश जौहरी के लिरिक्स. सुनीता राव की एल्बम धुआं का था गाना. एंड आई नो बहुत लोगों को शॉक लगा होगा कि ये 1991 में आया था, पर तब से लेके अब तक इस गाने ने बहुत सारी जनरेशन की लड़कियों को ना एक अलग तरह का स्पेशल फील करवाया है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी ये गाना बजता था और मैं सीधा शीशे के सामने भागती थी, खुद को देखती थी, थोड़ा इतराती थी, थोड़ा डांस करो, थोड़े बाल बनाओ, मतलब फुल ऑन मेन कैरेक्टर वाइब. एंड आज नवरात्रि एंड गरबा का सबसे हिट गाना है ये. परी हूँ मैं हर तरफ सुनाई देता है, गरबा नाइट, डांडिया प्ले लिस्ट, बिकॉज इट मेक्स एवरी गर्ल हैव दैट मेन कैरेक्टर मोमेंट. वो वाली फीलिंग होती है ना कि आज मैं मस्त लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. आई एम माई ओन सेंटर. एंड आई होप ऑल ऑफ अस फील लाइक दैट एवरी टाइम. बट इस गाने को सुनते हुए तो डेफिनेटली हम ये फील करने वाले हैं. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है परी हूँ मैं, ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: सुनी राव की आवाज में दैट वॉज परी हूँ मैं. बचपन नहीं, अभी भी मैं बस इतरा रही थी, खुद को देख रही थी, बाल बना रही थी, शर्मा रही थी. दिस सॉन्ग मेक्स यू फील सो ब्यूटिफुल. थैंक यू सुनीता राव फॉर दिस आइकॉनिक आइकॉनिक सॉन्ग. एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी गाना फ्रॉम द 90s 2000s जो आज भी आपके लिए एक आइकॉनिक गाना है, मुझसे और अशकाय के साथ आके शेयर करो. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी. कृष्णा धनधनियोली वाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका. चार हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जंप करके बूम शाका इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: Number 3.

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: ट्रेंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट RajBhog.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
4: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
6: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
5: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

वेंसडे है दोस्तों, यानी ना वीकेंड का स्ट्रेस ना मंडे का मेस। बस बीच की ये शाम जो कह रही है थोड़ा मुस्कुरा लो, लाइफ उतनी भी सीरियस नहीं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, जो आपके मिडवीक को बनाएगी फुल ऑन हैप्पी मोड में शानदार। वैसे आज का जो न्यू जर्सी का वेदर है ना, वो यार देखकर बस एक ही गाना मन में आता है कि हमारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मतलब एकदम फिल्मी लग रहा है, थोड़ा ब्रीजी, थोड़ा सनशाइन विद दैट पम्पकिन स्पाइस स्मेल इन द एयर। और ट्रैफिक में तो लोग यार थोड़ा बहुत विंडोज खोल के भी चल रहे हैं, क्योंकि तो खूबसूरत सी प्लेलिस्ट, मिर्ची की प्लेलिस्ट बैकग्राउंड में चल रही है। और ऐसे मूड में ना यार चाय भी और अच्छी लग जाती है, इफ नॉट चाय कॉफी भी बहुत ही मीठी लगती है, मुस्कुराहट भी कंटेजियस हो जाती है। सो टुडे मिर्ची सिद्धि का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, नो स्ट्रेस नो ड्रामा, बस गुड वाइब्स का जैम। और पता है फील गुड वाइब्स ना हमेशा एक्सपेंसिव चीजों से नहीं आती, मतलब कभी कभी सिर्फ एक रैंडम कॉम्प्लीमेंट भी अगर दे दो ना तो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आती है, और एक प्यारा सा गाना बजा दो ना तो भी वो मुस्कुराहट आ जाती है। तो चलिए वेंसडे के शाम में आपके लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर मूड सॉन्ग फॉर टुडे। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि, और तब तक के लिए आपके लिए ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka. Milci, burka.
2: हेलो,
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या करना है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह।
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
2: टाइम खराब कर रहे हैं,
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा पेशाब लूट रहे हो आप,
2: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: है तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर
3: ठीक है, मैं निकलवा लूंगा।
2: ठीक है,
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे।
2: हां ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
9: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ नौ गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
10: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
11: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
10: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है, और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
16: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
17: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।
18: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
19: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
18: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन एनजे। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
20: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
21: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

Kurili, uçanaki kurili. Sham shada, let's do not donkey, have a funky time. कभी नोटिस किया है, कुछ गाने ना सुनने के लिए नहीं होते, महसूस करने के लिए होते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे ही मिर्जापुर का नाम सुनते हैं ना, दिमाग में सबसे पहले गन्स, बौकाल, पावर गेम्स, रिवेंज, यही सब आता है। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गाना है जो बिल्कुल उल्टा एहसास देता है। जी हाँ, वारू फॉरएवर। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये गाना ओरिजिनल यानी वारू उसका नया वर्जन है, जो फैंस के बीच इतना ऑर्गेनिकली पॉपुलर हो गया कि यार मेकर्स ने उसे फिल्म के लिए दोबारा लाया। और इस बार श्रेया घोषाल और रोमी की आवाज ने उस इमोशन को और भी गहरा बना दिया था। कंपोजर आनंद भास्कर और लिरिसिस्ट जिनी दीवान ने उसी रूह को एक नई कहानी के साथ फिर से जिंदा किया था। और शायद यही वो बात है कि यार वारू फॉरएवर ना इतना अलग लगता है, लेकिन फिर भी अपना सा लगता है, क्योंकि मिर्जापुर की इतनी वॉयलेंट दुनिया में भी ये गाना याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर होता है। तो कभी कभी सबसे लाउड कहानियों के बीच सबसे खामोश गाने ही दिल में घर बना देते हैं। तो चलिए, अगर आज का दिन थोड़ा स्लो है या बस 2 मिनट की सुकून की तलाश है, तो ये गाना शायद आपकी प्लेलिस्ट में अपनी जगह बना ले। सुनते हैं वारू फॉरएवर ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, Mirchi Mornings पर मैं मुरत प्रसला तुम्हारे साथ में हूँ और अभी मेरे साथ में है अगले कंटेस्टेंट फॉर मिर्ची नौ लग का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 नाइट्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तुमको जीतने के लिए गोल्ड की चेन. लेट्स सी अगली कंटेस्टेंट जीत पाती है कि नहीं. हेलो,
2: हाय प्रसला.
1: हाय, व्हाट्स योर नेम?
2: माय नेम इज जिनाल.
1: जिनाल, हाउ आर यू?
2: Yeah, I'm doing well, thank you. How are you? How's your morning?
1: Great, great. My morning is great. अभी आपसे बात करके और मजा आ रहा है मुझे. And अब हम एक contest साथ में खेलने वाले हैं.
2: Okay.
1: All right. So are you ready?
2: Yeah. Happy Navratri.
1: Happy Navratri to you. Thank you so much. So मेरा सवाल ये है, ध्यान से सुनना और बहुत quickly answer करना, ठीक है?
2: Okay, sure. I'll try.
1: All right. So Bollywood की एक film है मुन्ना भाई MBBS. उसमें character है Circuit. ये किस एक्टर ने प्ले किया है? क्विकली.
2: अर्शद द्वारसी.
1: अर्शद द्वारसी इज द करेक्ट आंसर. कांग्रेचुलेशंस. ये
2: या वेरी एक्साइटेड. या आई वाज जस्ट या इट वाज अ इजी वन एंड क्विक वन. आई वाज एबल टू गेट इट, सो दैट वाज गुड.
1: ये थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड यू मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट राउंड. समवन फ्रॉम मिर्ची विल गेट इन टच विद यू कि अब आगे क्या करना है. सो जस्ट कीप एन आई ऑन योर नंबर. ओके,
2: ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रिसिला.
1: ऑलराइट, बाय बाय.
0: मिर्ची 900,000 का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयां. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
6: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
7: मैत्री ब्रिंग्स यू थक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी.
8: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमर होल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी. रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org.
9: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है. दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट rajbhog.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
10: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
11: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
10: Wait, they can see us on Sunday?
11: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
12: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
13: अरे माँ, अभी भेजता हूँ. टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे. टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
12: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
14: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
15: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
14: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
15: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
14: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
16: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने.
17: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 900,000 विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
18: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
17: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions presented by Virani Jewelers
19: on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट virani jewelers.com.
20: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट. रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन. हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें. इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा.
21: तेरा क्या होगा कालिया?
22: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
21: अब मिर्ची खा.
23: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों, नवरात्रि की तैयारियां हमारी तो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और साथ ही में आपको गोल्ड जितवाने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है विद मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। तो चलिए देखते हैं आज किसके किस्मत में गोल्ड की चेन है। आई हैव विद मी नेशल जी। हेलो नेशल जी।
2: आई
1: एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम ऑल्सो वेरी गुड।
1: तो नेशल जी, हमारे काफी सारे लिसनर्स को पता है आप हमारे कंसिस्टेंट विनर रहे हैं, जिससे आज का सवाल मैं आपको थोड़ा टफ पूछने वाली हूँ, चलेगा?
2: थोड़ा इजी रखो मेरे लिए।
1: देखिए दोस्तों, नेशल जी इज दैट वन पर्सन जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं और बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लगातार करते रहे और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। तो नेशल जी, हमारे कंसिस्टेंट विनर रह के कैसा लगता है आपको?
2: मुझे लगता है कि मैं कस्टमर ही हूँ रेडियो मिर्ची।
1: देखिए, आपकी तरफ से बाकियों को भी बताइए, कई बार लोगों को लगता है कि अरे रेडियो मिर्ची पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, सच्ची में सोना मिलता भी है क्या? तो आप ही बताइए लोगों को कि क्या कॉन्टेस्ट होता है और कितनी धूम मचती है।
2: नहीं नहीं, सोना तो मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है।
1: बहुत, नेशल जी के लॉकर में पड़ा हुआ है सारा। तो चलिए देखते हैं आज नेशल जी जीतते हैं कि नहीं। तो नेशल जी, आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे आपके लिए थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन चलिए फिलहाल थोड़ा बहुत आसान सा सवाल भी बना के बताती हूँ आपको, ठीक है? और अगर ये सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होता हमारे फाइनल राउंड के लिए एट वीरानी ज्वेलर्स। ओके
2: ओके,
1: ठीक है, चलिए। तो आपके लिए जो सवाल है वो है, नवरात्रि का एक गाना है, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, ये गाना कौन सी मूवी का है?
2: स्काई पोस्ट है।
1: पक्का?
2: हे शुभारंभ, हाँ स्काई पोस्ट है। यस।
1: ओहो नेशल जी, हर बार आप जीत जाते हो, लेकिन इस बार आपने गलत जवाब दे दिया। ऐसा मैं नहीं कह सकती आपने सही जवाब दिया।
2: अरे
1: चलो, थोड़ा डराना तो बनता है आपको नेशल जी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए जिसमें आप जीत सकते हो सोने की चेन। कांग्रेचुलेशंस।
2: ओके वाओ, थैंक यू सो मच।
1: और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi. और नेशल जी, जाते जाते हम मिर्ची पे क्या बोलते हैं?
2: सुनते रहो रेडियो मिर्ची।
1: क्या बात है, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: क्या हर हफ्ते ग्रोसरी का बिल देख के शॉक लगता है? गैस और डीजल प्राइसेस से दिमाग गर्म हो रहा है? हेल्थ इंश्योरेंस कितना महंगा हो गया है और मेडिकेयर, मेडिकेड, सोशल सिक्योरिटी को काटने का प्लान है? हम आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जबकि अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं। इसको सिर्फ एक चीज बदल सकता है, आपका वोट। आपके फ्यूचर में आपकी आवाज है आपका वोट। इस नवंबर जरूर वोट करें।
3: Paid for by Citizen Desi, a non-profit organization. Learn more at citizendesi.org।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: Are your grocery bills giving you sticker shock every week? Are you cutting down on travel because of high gas prices? And why are we at war with Iran and Canada? Trump is making such a mess of everything for the common man while enriching himself and his billionaire friends. Let's vote for all Democrats this November so we can have a Congress that actually does its job. We don't need another 2 years of daily bad news. Be sure to vote for Democrats.
3: Paid for by Desi Blue, DesiBlue.org. Not authorized by any candidate or candidates committee.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
9: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
8: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
9: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
0: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: दोस्तों, हॉरर मूवीज में एक चीज नोटिस की है, जब भी कोई कहता है कि उस जंगल में मत जाना, बॉलीवुड का हीरो सबसे पहले वही जाता है। शमशान दलाई सुन रहे हैं आप, ना आपकी मिर्ची सुद्दी, और हॉरर की बात इसलिए क्योंकि वन को लेकर एक इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी है। ये वो फोक हॉरर वाली दुनिया है जहां डर सिर्फ भूतों से नहीं आता, कभी जंगल की खामोशी, कभी पुरानी कहानियों, और कभी उन चीजों से जिसे हम समझ नहीं पाते। और मुझे तो यार इंडियन फोक हॉरर का कॉन्सेप्ट बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। लगता है, क्योंकि एक तरफ हमारी दादी नानी की सुनी हुई कहानियां और दूसरी तरफ मॉडर्न सिनेमा का सस्पेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो कभी कभी जो दिखाई नहीं जाती वो ना ज्यादा डराती है। तो आप भी बताओ, हॉरर मूवी में आपको सबसे ज्यादा क्या डराता है? अचानक आने वाले भूत या वो सस्पेंस जब पता ही नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अगला गाना, क्या पता ये आपके लिए वो चिल्स लेकर आए। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड में कंफ्यूजन एक बार शुरू हो जाए ना, तो एक झूठ को संभालने के लिए 10 नए एक्सप्लेनेशंस रेडी करने पड़ते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की उड़ता तीर को लेकर जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं ना, उसने मुझे बॉलीवुड की एक फेवरेट कैटेगरी की याद दिला दी, कन्फ्यूजन कॉमेडी। यानी वो फिल्में जहाँ एक गलत आइडेंटिटी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इतने सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देते हैं कि ऑडियंस बस सोचती रहती है कि अब ये हीरो यहाँ से निकलेगा कैसे। जैसे कि प्रिया दर्शन के काफ़ी सारे मूवीज, हेरा फेरी हो, फिर हंगामा हो, और आयुष्मान का जब नाम आता है तो मुझे वैसे भी स्लाइटली अनयूजुअल कैरेक्टर्स और ऑफ बिट सिचुएशन याद आ ही जाते हैं, क्योंकि आयुष्मान हो और हटके कैरेक्टर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे पर्सनली वो कॉमेडी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जहां जोक से ज्यादा सिचुएशन ही फनी हो। तो आप भी बताइए कि आपको कौन से टाइप की कॉमेडी पसंद है, हेरा फेरी जैसे फुल कंफ्यूजन या बधाई हो जैसे एवरीडे लाइफ कॉमेडी। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो चलिए अब कंफ्यूजन खत्म, म्यूजिक शुरू, यानी अगला गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
2: Mirchi, burka.
3: हेलो।
4: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
3: हेलो
4: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
3: मैं
4: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
3: तुम कौन हो?
4: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ, ठीक है?
3: क्यों आ जाऊं?
4: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
3: तुम्हें बात करनी है?
4: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
3: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
4: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
3: अरे किसका अंकल?
4: बेटा तुम्हारा अंकल।
3: ये कब आ गया?
4: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
3: हेलो
4: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
3: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
4: वही लेवल 7।
3: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है, मैं वो नहीं हूँ।
4: अग्रेशन।
3: कौन हो तुम मेरे?
4: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
3: अरे तू है कौन, तू ये बता।
4: ना इसे, ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
3: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी गांव में, ठीक है?
4: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
3: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
4: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
11: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
10: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
12: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
13: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 golden opportunities, हर दिन जीत सकते हैं 1 precious gold chain। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 rapid fire questions प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
14: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 carat gold एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
15: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार, ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
16: This festive season, Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026, and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
17: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
0: Nine Nights, One Divine Spirit.
18: Gayatri Chetna Center brings the community together in Piscataway.
0: Join daily Garba, October 11th to 19th at 7 p.m.
18: Don't miss the Atham Yagya on the 18th, Norm Yagya on the 19th, and Sharat Purnima Garba on the 25th.
0: Gather with family and experience the divinity. Visit GayatriCenter.org.
19: Here's something you won't want to miss, A Beat of Our Own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community, and a story about finding common ground when it matters most. Catch A Beat of Our Own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit MacArthur.org.
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
18: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
20: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
21: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
20: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
22: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
23: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
24: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
25: तेरा क्या होगा कालिया?
26: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
25: अब मिर्ची खा।
27: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
2: वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हार चल रहा है मिर्ची पर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और मेरे साथ में कौन है? हेलो,
3: हाय प्रिसला, गुड मॉर्निंग, दिस पार्थ।
2: हाय पार्थ, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि।
3: यू टू।
2: सो व्हाट्स हैपनिंग, नवरात्रि में क्या चल रहा है?
3: Nothing much, just driving to work. You know, I wish I was back in India right now, because I'm from Vadodara, and I don't know if you know, but that's like a big celebration there of Navratri
2: in Gujarat. फेमस विलन Mogambo in Mr. India, quickly.
3: That was Amrish Puri.
2: Amrish Puri is the correct answer. Thank you so much, Parth, for participating. Congratulations.
3: Thank you.
2: You've moved to the next round, and someone from Mirchi will contact you soon. Thank you so much for participating. And
3: all right.
2: Just keep an eye on your phone number. Someone will get in touch with you. Okay?
3: Okay. Sounds good. Thank you for playing so much nice songs and, you know, for your show.
2: Oh, my pleasure. Thank you so much.
1: Mirchi 9 lakh ka haar. Presented by Virani Jewelers.
0: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
8: रंगीला तारा रंग भेद जुए तारी बात।
7: इस नवरात्रि वीरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
11: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो। राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
12: प्री बुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स एंड अवेल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन। ऑल्सो एंजॉय 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। ऑफर ओनली टिल 25th October। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी टू ग्रैब दिस ऑफर। कंडीशंस अप्लाई।
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
1: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
5: संडे अक्टूबर 18 सुबह 11 से शाम 7 बजे तक एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन एनजे। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
1: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
14: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
15: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
14: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
16: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
17: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाखी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
18: अरे कहना क्या चाहते हो,
7: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
10: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
19: लिसनर एम आई बैक टू बैक गाना सुनेगा,
20: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
19: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और नगाड़े संग ढोल तो तैयार है ही। नवरात्रि की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है, स्पेशली आपको सोने की चेन देने का, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लक्का हार। तो दोस्तों, नवरात्रि की नौ रातें यानी नौ गोल्डन चांसेस टू विन गोल्ड चेन। तो चलिए देखते हैं आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है। आज मेरे साथ है दीपू जी। नमस्ते दीपू जी।
2: Hi.
1: How are you?
2: I'm good. How are you?
1: I am doing good. तो क्या नवरात्रि में डांस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है?
2: अभी हम लोग ड्रेसअप करके we are going for गरबा।
1: देखिए ये लोग गरबा शुरू भी हो चुका है।
2: आप गुजराती है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है गरबा का।
1: नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये सिर्फ गुजरातियों का ही जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये पूरे इंडिया का, ये पूरे NRI कम्युनिटी सबका हक बनता है कि उतनी ही धूम के साथ हम सब नवरात्रि खेले और बहुत ज्यादा मस्ती करें, बहुत ज्यादा डांडिया खेले, गरबा खेले आप सबके साथ, राइट?
2: चलिए, का थोड़ा स्पेशल होता है।
1: बिल्कुल, तो आप जैसे कि मतलब वो बोलते हैं ना, नवरात्रि जब ही आती है हम सब गुजराती बन जाते हैं। कोई डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता कौन गुजराती है कौन क्या है, सब गुजराती बन जाते हैं।
2: तो चलिए बन जाते हैं।
1: बिल्कुल
2: फेस्टिवल,
1: बिल्कुल। तो इसी के साथ, इसी फेस्टिवल की खुशी में आपको सोने की चेन जितवाने का हमारा तो प्लान है, लेकिन देखते हैं कि आप जीत पाओगे कि नहीं। तो मैं पूछूंगी आपको बॉलीवुड का बहुत ही आसान सा सवाल नवरात्रि से रिलेटेड ही, और उसका सही जवाब देते हो तो फिर आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए, ठीक है?
2: ओके
1: चलिए, तो आपका सवाल बहुत ही आसान सा है, और ये सवाल का गलत जवाब दिया ना तो मतलब बदनाम कर रहे हो आप, राइट? तो देखो अभी तो अभी एकदम फुल गुजरात की आन बान शान आपके साथ। चलिए ठीक है, तो बॉलीवुड का एक गाना है ढोलीड़ा ढम ढम ढमक बाजे, बहुत ही प्यारा सा गाना है, गंगूबाई का गाना है। इसकी एक्ट्रेस कौन है?
2: आलिया भट्ट अपनी।
1: क्या बात कर रहे हो, आलिया भट्ट थी?
2: हाँ,
1: अपनी आलिया भट्ट अपनी,
2: अरे 100 पर, हाँ मींस अपनी।
1: अरे अपनी ही आलिया भट्ट है, और का सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। कंग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो गोल्ड चेन जीतने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो आज गरबा में और भी जोर से नाचना, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे फॉर द फाइनल राउंड एट वीरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033

0: 7444 या फिर आप मुझे आरजे मिर्ची सिद्दी को हमारे डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। और तब तक के लिए अभी बहुत ही माहौल बन चुका है नवरात्रि का, तो अगला गाना भी नवरात्रि वाला, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची 9 लाख का हार, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: हॉट जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @mirchijituraj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
6: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Make your child's party unforgettable this year. Come get your crafty hands on at our creative studio in Marlborough. 26 plus DIY projects, from slime to crafts, all designed around your child's age and theme. And of course, pizza, popcorn and unlimited fun. Visit thecraftyhands.com or call 732-397-0057.
9: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
10: अरे कहना क्या चाहते हो,
11: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
9: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस, प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक जमाना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

अगर मंथ्स का बैकग्राउंड स्कोर होता ना तो अक्टूबर का साउंड ट्रैक डेफिनेटली थोड़ा सिनेमैटिक होता। शाम शांता लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि। और इमेजिन कीजिए कि यार पत्तों के कलर बदल रहे हैं हवा में, वो हल्का सा क्रिस्प फील, कॉफी शॉप्स में पम्पकिन स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, सनसेट थोड़ा जल्दी और कार में एक परफेक्ट बॉलीवुड मेलेडी, तो बस सडनली राउट वन भी ना यश चोपड़ा के सेट जैसा लगता है। और मुझे लगता है कि यार हर सीजन का एक म्यूजिक मूड तो जरूर होता है, मतलब समर में ऐसे रोड ट्रिप वाले गाने, विंटर में कोजी मेलेडीज, और फॉल में वो गाने जो थोड़ा वार्म, थोड़ा रोमांटिक और थोड़ी ड्रीमी फील होते हैं। तो आज बताइए कि आपका अक्टूबर का ऑफिशियल बॉलीवुड साउंड ट्रैक कौन सा गाना होना चाहिए। टेल मी ऑन इंस्टा एट आवर जियोमेट्री सिद्धि SIDDHI, और सिर्फ एक ही गाना चूज कर सकते हो। चलिए, लेकिन ये गाना मेरी तरफ से अक्टूबर साउंड ट्रैक में एंट्री मार रहा है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: ¡Rámbala!
1: ¡Burga, burga! ¡La viva la burga!
2: ¡Mirchi, burga!
3: ¿Aló?
4: ¿Aló? Sir, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ. सर, आप जो भी हैं, मुझे टाइम कम है. सर, ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल है, एक हरा, कौन सा काटू सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट.
3: कैंची ले ली सर.
4: लेकिन सिचुएशन है.
3: आसपास
4: है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
3: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट
4: जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल,
3: फटना नहीं चाहिए. आसपास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
4: ठीक है.
3: हरा काट के देख धीरे से.
4: वन टू थ्री. कंग्रेचुलेशन.

0: ताली बज रही है, कौन है?
1: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
0: शोरूम का रिबन काट रहा
1: है।
0: हाँ।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ, सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
4: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
6: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: इस साल बच्चे की पार्टी बनाइए अनफॉरगेटेबल। कम गेट योर क्राफ्टी हैंड्स ऑन एट आवर क्रिएटिव स्टूडियो इन मार्लबोरो। 26 प्लस DIY प्रोजेक्ट्स, स्लाइम से लेकर क्राफ्ट्स तक, डिजाइन फॉर एवरी चाइल्ड्स एज एंड थीम, साथ में पिज्जा, पॉपकॉर्न और अनलिमिटेड फन। विजिट द craftyhands.com और कॉल 732-397-0057।
11: दिस फेस्टिव सीजन Sona Jewelers presents Grand Giveaway 2026. Join our biggest offer of the year. Come to Sona Jewelers between September 12th and December 31st, 2026 and enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
12: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
13: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
14: Here's something you won't want to miss. A Beat of Our Own, a brand new musical comedy where competitive Bhangra dance takes center stage at MacArthur Theatre, Princeton. It's a high-energy, feel-good, family-friendly celebration of dance, creativity and community. And a story about finding common ground when it matters most. Catch A Beat of Our Own October 7th through 25th at MacArthur Theatre in Princeton. For tickets and more information, visit macarthur.org.
15: चलो इस बार दिवाली को नए तरीके से मनाते हैं। पटाखों के बदले मिठाइयों से सजाते हैं, फुलझड़ी की जगह काजू कतली और अनार की जगह रस मलाई का चलन शुरू करते हैं, रसगुल्ले को चरखी की जगह निपटाते हैं और खुशबू पटाखों की नहीं मीठे की फैलाते हैं। जरा दिखा दे दुनिया को कि स्वाद से कैसे दिवाली मनाते हैं। ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com।
3: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
4: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
3: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
5: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, न्यू जर्सी के लिविंग रूम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और वीकेंड ऑफिशियली अराइव कर चुका है, रिमोट लोकेट हो गया है, फैमिली ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो क्या देखने वाले। लेकिन स्नैक डिपार्टमेंट में एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुई है। जी हाँ, मतलब नॉर्मली यार पॉपकॉर्न की न्यूज में ना ज्यादा सस्पेंस नहीं होता, पॉप करो बोल में डालो और डन। लेकिन इस बार स्टोरी में ट्विस्ट है, यानी हमारे इंडियन किचन्स का वो फेमिलियर गोल्डन इंग्रेडिएंट हल्दी अब पहुंच गया है पॉपकॉर्न्स तक। यस, टर्मरिक एंड पॉपकॉर्न आर टुगेदर, यानी फेमिलियर क्रंच के साथ एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड देसी फ्लेवर। और इस ब्रेकिंग स्नैक न्यूज के सेंटर में है दीप टर्मरिक पॉपकॉर्न, टर्मरिकली डिलीशियस। यानी अगली मूवी नाइट पर हेडलाइन खुद वेरीफाई कीजिए, आज ही ले आइए फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और अब स्नैक बुलेटिन कंप्लीट करते हैं, चलिए थोड़ी रियल हेडलाइन से ब्रेक लेते हैं और बॉलीवुड के सुरों में चलते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची 9 लाख का हार, presented by Virani Jewelers.
2: मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स, और मिर्ची में चल रहा है वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लाख का हार, जिसमें नवरात्रि की हर रात को तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन द ग्रैंड प्राइज ऑफ गोल्ड का चेन। लेट्स सी हमारी अगली कंटेस्टेंट का क्या नाम है। हेलो
3: हेलो, हाय
2: हाय, व्हाट्स योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज दीप्ति।
2: हाय दीप्ति, हाउ आर यू डूइंग टुडे?
3: I'm doing great. How are you?
2: Great. Thank you so much for asking. Happy Navratri to you.
3: Happy Navratri to you too.
2: कैसे जा रही है नवरात्रि अभी तक?
3: Good, good. It's going great.
2: All right. कहाँ से हो आप इंडिया में से?
3: मैं यूपी लखनऊ।
2: अरे वाह, लखनऊ से हैं। तो let me ask you my next question quickly.
3: Yeah, yeah.
2: और ध्यान से सुन के जल्दी से जवाब देना, ठीक है? Within seconds you have to answer कि what is India's national animal?
3: It's tiger.
2: It's tiger, that's correct. And I'll give you that. Bengal tiger is the correct answer. Congratulations, yeah. Deepthi.
3: Thank you.
2: Thank you so much for participating, Deepthi. You move to the second round.
1: Mirchi 9 lakh ka haar, presented by Virani Jewelers.
4: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jaano.

0: इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट virani jewelers.com।
3: दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन हो और कोलकाता का फ्लेवर ना हो, ऐसा कैसे?
2: मैत्री ब्रिंग्स यू थाक, पूजा, आरती, भोग, सिंदूर खेला, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड अ डिलीशियस डिनर, प्लस लाइव म्यूजिक बाय महालक्ष्मी अय्यर, अंकिता भट्टाचार्य एंड शुभदीप दास चौधरी।
4: अक्टूबर 24th एंड 25th, हमरखोल्ड अपर एलिमेंट्री स्कूल, ईस्ट ब्रंसविक, न्यू जर्सी। रजिस्टर टुडे एट maitriusa.org।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: बुराई पे अच्छाई की जीत पर मुंह मीठा करना तो बनता है। दशहरा के खुशहाल अवसर पर राजभोग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपनी लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को।
2: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
7: बिजनेस एनजे प्रेजेंट्स दिवाली फेयर 2026, द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ऑफ द सीजन, जहां आपके लिए है डिजाइनर क्लोथ्स, ज्वेलरी, हेना और लाइव बॉलीवुड डांसेस।
2: संडे अक्टूबर 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, एट 102 कार्नेगी सेंटर ड्राइव, प्रिंसटन, NJ। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। कॉल 6099372800 और हिट अप diwalifair.com।
8: प्रीबुक योर ज्वेलरी एट कल्याण ज्वेलर्स and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin।
11: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
0: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार।
1: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 9033647244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
2: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: गुड इवनिंग दोस्तों, नवरात्रि के 9 रातें यानी गोल्ड जीतने के 9 चांसेस और मिर्ची पर आपकी किस्मत का धमाका। विरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लक का हार। तो चलिए देखते हैं आज किसके नाम होती है गोल्ड की चमक। नमस्ते मनन जी।
2: हेलो, नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: एकदम मस्त, आप बताइए।
1: एकदम बढ़िया। क्या आप नवरात्रि के लिए तैयार हो?
2: एकदम यार, वेटिंग फॉर इट।
1: और क्या आप गोल्ड जीतने के लिए तैयार हो?
2: एकदम एकदम।
1: तो चलिए मैं आपको पूछूंगी एक बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल और नवरात्रि से ही रिलेटेड है, और उसका अगर आप सही जवाब देते हो तो आप पहुंच जाओगे हमारे अगले राउंड में। ठीक है?
2: ठीक है।
1: चलिए, तो आपका बहुत आसान

0: कहार में ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। नवरात्रि के 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस, तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, टाइप कीजिए नवरात्रि और भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियां आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयां। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
2: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
3: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
2: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
4: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
5: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
12: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
13: इस दिवाली जब अपनों के संग रोशनी और प्यार का माहौल हो, तो रेड लेबल के स्वाद और कड़कपन से घुले हर एक मोमेंट। रेड लेबल की हर एक रोशनी वाली चुस्की दिलों के रिश्ते और सेलिब्रेशन को कर दे और भी रोशन। हर पैक के साथ बढ़ाएं अपनों का प्यार ताकि खुशियां छलकती रहें। इस दिवाली रेड लेबल की रोशनी वाली चुस्की खुशियों को करे ज्यादा और भी ज्यादा।
14: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
15: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लकी विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
16: अरे कहना क्या चाहते हो?
17: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
15: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
18: ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
19: तेरा क्या होगा कालिया?
20: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
21: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
22: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी, हैव अ फंकी टाइम।
23: कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है। मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जाने तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुली था। कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज्ड म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था। लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वाज एंटायरली अ जेन जी थीम. जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तो या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी जेन जी एंथम बन गया था बिफोर जेन जी वॉज इवन अ टर्म. जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स एनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था. मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था. और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है. टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजी मिर्ची सिद्धि, SIDDHI. और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कांट डांस फ्रॉम जाने तो या जाने ना का एल्बम, जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान. और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं. वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था बिफोर द फाइनल मिक्स. तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कांट डांस वाला ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: की टाइम।
1: कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बात हो रही है 2008 के एल्बम की, जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके ना हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनादर सॉन्ग, अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरे मिलाना नजरे चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिरमाया गया इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पे मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरे मिलाना नजरे चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनादर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरे मिलाना नजरे चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं लैब
2: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो मैं तो नौ पकड़ के चल रहा
2: हूं। दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
3: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
2: टाइम खराब कर रहे हैं।
3: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा पेशाब लूट रहे हो आप।
2: बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहाँ से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेंट कर दे।
3: मैं निकलवा लूंगा
2: ठीक है,
3: और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
2: हाँ ठीक है देख ले देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हाँ ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो। दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com।
6: हेल्थ केयर में एक सक्सेसफुल करियर की तरफ आपके हर कदम पर एम्स कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज हमेशा आपके साथ है।
7: चूज करियर फोकस सर्टिफिकेट एंड डिग्री प्रोग्राम्स इन MRI, अल्ट्रासाउंड, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोडायग्नोस्टिक, एनेस्थीसिया, सर्जिकल टेक्नोलॉजी

0: and many more with hands-on clinical experience.
1: AIIMS Education is now welcoming international students and offering I-20 to eligible international students pursuing an F1 student visa. Visit aimseducation.edu. Your healthcare future starts with AIIMS.
2: Sona kharidne ke soch rahe hain? RK Jewels chaliye. Isse pehle ke price badh jaye, gold bars kharide wholesale price pe only at RK Jewels. RK Jewels, best quality, best price.
3: Apne ghar mein to har koi share hota hai. लेकिन शेयर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
4: सिंस ओवर 15 इयर्स लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
6: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग अब पूरे 9 लाख विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स.
7: अरे कहना क्या चाहते हो?
8: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार.
6: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स
9: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
10: दिस फेस्टिव सीजन Sona Jewelers presents ग्रैंड गिवअवे 2026. जॉइन आवर बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर. कम टू Sona Jewelers बिटवीन सितंबर 12th एंड डिसेंबर 31st 2026. And enter for your chance to win a BMW, a $2,500 gift card, or a $1,000 gift card. So, what are you waiting for? Visit Sona Jewelers in Island, New Jersey today.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Island.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
15: Oh no!
16: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
17: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Island, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.

कुछ ऐसे एल्बम्स जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने तो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कंपोज बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है, बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपकी भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे। वो बस एक लंडन बेस्ड गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे, लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स है जो आपको पसंद है जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है। उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI, और तब तक के लिए जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: All right, Virani Jewelers presents Mirchi 9 lakh ka haar khel rahe hain hum. Main bole to Priscilla, mere saath line par hamari agli contestant hai. Hello.
2: Hi.
1: Hi, what's up?
2: Yeah, I'm doing good. How are you?
1: I'm great. Name?
2: Oh, my name is Sachi.
1: Hi Sachi, क्या चल रहा है?
2: बस अभी तो नवरात्रि चल रही है.
1: All right, कैसे जा रही है नवरात्रि? मजा आ रहा है?
2: नहीं, यहाँ तो इंडिया मिस हो रहा है.
1: Oh, I know. फेस्टिवल के नाम पे घर बहुत मिस करते हैं लोग. लेकिन मैं तुमको भी खुश करने की कोशिश करती हूँ. लेट्स सी अगर तुम्हारा लक बहुत काम करेगा आज तो यू माइट बी वन ऑफ द लकी कंटेस्टेंट्स ऑफ मिर्ची 9 लाख का हार.
2: ओके.
1: ऑलराइट, सो सची क्विकली मुझे जवाब देना, बहुत जल्दी से जवाब देना. मेरा सवाल है कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि का कैरेक्टर कौन सी एक्ट्रेस ने प्ले किया था?
2: काजोल.
1: काजोल इज द करेक्ट आंसर. कंग्रेचुलेशंस. ये सची.
2: या थैंक यू सो मच.
1: तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हो. हैप्पी नवरात्रि, ढेरों बधाई आपको नवरात्रि की.
2: Yeah, thank you.
1: All right. Thank you so much for getting in touch with us and participating in Mirchi 9 Lakh Ka Haar.
2: Okay, thank you.
1: Brought to you by Virani Jewelers. Or agar aap bhi participate karna chahte ho to fatafat se navratri type karo 9033647244 par likh kar apne pure naam ke sath bhejo abhi ki abhi. And you could be the next participant in Mirchi 9 Lakh Ka Haar.
0: Mirchi 9 Lakh Ka Haar presented by Virani Jewelers.
3: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो. दिवाली की ढेरों बधाइयाँ. सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
7: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
8: I am not going to bed with you ever again.
7: But why? What did I do?
8: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
7: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
8: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
7: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
8: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
9: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: So gala tara, sabila tara, rangila tara,
0: नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरत्न हार.
11: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन. पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि टू 9033647244. दैट्स 9033 मिर्ची. और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
12: ऑन ओक ट्री रोड. फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट viranijewelers.com.
13: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: जिंदगी की खुशी से जिंदगी की मिठास तक सब कुछ 9 गुना ज्यादा हो. राजभोग विशेस यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी नवरात्रि. राजभोग विल स्वीटन योर फेस्टिव सेलिब्रेशंस. फॉर ऑर्डर्स विजिट राजभोग.com या अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर से अपनाइए राजभोग को.
17: धमाका बड़ा था ना, लेकिन इससे भी बड़ा धमाका होने जा रहा है जर्सी में।
18: बिजनेस NJ presents Diwali Fair 2026, the biggest shopping festival of the season, जहां आपके लिए है designer clothes, jewelry, henna और live Bollywood dances.
17: Sunday, October 18, सुबह 11 से शाम 7 बजे तक at 102 Carnegie Center Drive, Princeton, NJ. Free entry and free parking. Call 609-937-2800 or hit up DiwaliFair.com.
19: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
20: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
21: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
20: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की धूम शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 रातों में गोल्ड चेन जीतने का मौका आपकी किस्मत में है या नहीं, अगर ये जानना है तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लक का हार। तो दोस्तों आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है, चलिए देखते हैं। नमस्ते अवनी जी, कैसे हो आप?
2: बस मजे में, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम मजे में, और सबसे ज्यादा मजे में तो इसलिए हूँ क्योंकि आपके साथ मुझे मिर्ची 9 लक का हार खेलने मिलने वाला है, brought to you by वीरानी ज्वेलर्स। तो क्या आप excited हो?
2: Yes, yes, I'm very excited.
1: तो अभी आपको मैं पूछूंगी एक सवाल, बहुत ही आसान सा नवरात्रि से रिलेटेड सवाल, बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल। उसका सही जवाब देते हो तो आप पहुंचोगे हमारे नेक्स्ट फाइनल राउंड में जिसमें आप जीत सकते हो गोल्ड चेन। ओके?
2: Yeah, sure, I'm ready and excited.
1: चलिए तो अवनी जी, आपका सवाल है, एक बहुत ही प्यारा सा नवरात्रि का गाना है, ढोली तारो ढोल बाजे, उसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कौन है?
2: ऐश्वर्या राय।
1: पक्का?
2: यस।
1: ओहो, ये तो गलत हो गया, ऐसा मैं नहीं कह सकती। बिल्कुल सही जवाब अवनी जी।
2: थैंक यू।
1: तो आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए, यानी मिर्ची 9 लक का हार जीतने के लिए, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों अगर आप भी मिर्ची 9 लक का हार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जल्दी से नवरात्रि टाइप कीजिए 9033647।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
2: लक्ष्मी का घर पर वास हो, इस दिवाली सारी खुशियाँ आपके पास हो, दिवाली की ढेरों बधाइयाँ। सेलिब्रेट दिस दिवाली विद RajJewels.com। नवरात एकज स्पिरिट,
3: गायत्री चेतना सेंटर कम्युनिटी ने साथ ही लावी रहा छे पिस्काटवे मा
2: रमो गरबा डेली 11-19 अक्टूबर सांजे 7 कलाक थी।
3: तारीख 18 ना रोज 8 यज्ञ, 19 9 यज्ञ अने 25 शरद पूर्णिमा गरबा ने मिस ना करता तो फैमिली साथे जोड़ाओ अने अनुभव डिविनिटी। विजिट GayatriCenter.org टुडे।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 20% off on making charges. Offer only till 25th October. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey to grab this offer. Conditions apply.
8: Cut

0: घर आए।
1: ये दिवाली नानक वाली, सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
2: मुझे नौलखा मंगा दे रे दीवाने।
3: सिर्फ आपको नहीं, मिर्ची के संग पूरे 9 लाख ही विनर्स को मिलेगा 9 गोल्ड चेन्स।
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
5: क्योंकि इस नवरात्रि विरानी ज्वेलर्स लेकर आया है मिर्ची नवरात्रन हार।
3: 9 नवरात्रि नाइट्स, 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, हर दिन जीत सकते हैं 1 प्रेशियस गोल्ड चेन। पार्टिसिपेट करने के लिए व्हाट्सएप नवरात्रि 2903-364-7244, दैट्स 9033 मिर्ची, और तैयार हो जाइए फॉर योर 9 रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स
6: ऑन ओक ट्री रोड। Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
7: Tera kya hoga kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi. It's hot.

anytime. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रोशी डार्लिंग प्लीज कम फॉर दिस अमेजिंग चैरिटी इवेंट जो मैंने प्लान किया है उसमें जस्ट वेयर लाइक योर नाइसेस्ट चनिया चोली बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अ रैंप वॉक और इस वॉक में बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक इट अ चैरिटेबल इवेंट सारे पैसे वी विल गिव टुवर्ड्स चैरिटी ऑफ कोर्स एंड ऐसे एक्साइटिंग हो जाएगा ना सब लोग मिल भी लेंगे नहीं तो फेस्टिव सीजन के अलावा कहाँ मिलने का होता है आई थिंक यू शुड टोटली कम एंड आई वाज लाइक ऑफ कोर्स आई विल कम रितु आंटी और मन में मैं सोच रही हूँ कि हे भगवान वॉमिट बट द थिंग इज ये कि रितु आंटी का जो नेफ्यू है जो लंदन से विजिट कर रहा है विनायक ही इज रियली क्यूट और विनायक की वजह से मैं इस चैरिटेबल फंक्शन में जाऊंगी भी चनिया चोली पहनूंगी भी और ये अजीब सा रैंप वॉक करूंगी भी और भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि मैं गिरूं ही ना और अगर गिरूं तो सीधा विनायक की गोदी में